0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप डेटिंग ऐप पर किसी को मिले हो, देन देयर इज दिस वन सिंगल रूल, अगर आप दोनों की बीच की केमिस्ट्री इज नॉट ऑन पॉइंट, आप उस बहुत ही अडोर्ड बंदे को अपनी किसी दूसरी फ्रेंड के लिए साइफन ऑफ स्लैश मार्केट नहीं कर सकते हो. नाउ मेरा इंटेंशन तो ये था व्हेन आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप कि यार तेरी मेरी दोस्ती अच्छी हो गई है, बट हमारे बीच में ऐसे वो क्रंची केमिस्ट्री नहीं है, तो व्हाई डोंट आई इंट्रोड्यूस यू टू माय अदर बेस्ट फ्रेंड, वो भी सिंगल है, और हो सकता है तुम दोनों के बीच की शिपिंग सही बैठ जाए. लेकिन इस बंदे को अपेरेंटली बहुत राइटली सो बुरा लगा दैट मैं अपने गुड्स फ्रॉम अ डेटिंग ऐप किसी और इंसान को पास ऑफ कर रही थी. एंड आई सेड यार मैं पास ऑफ नहीं कर रही थी, तू बढ़िया बंदा है, मेरी बेस्टी बढ़िया बंदी है, शी इज ऑल्सो सिंगल, यू आर ऑल्सो सिंगल. ही वॉज लाइक दैट डज नॉट मीन जस्ट बिकॉज हम दोनों की केमिस्ट्री नहीं है तू मुझे किसी और को हैंड ओवर कर देगी. भाई बट मेरा इंटेंशन तो यही था कि दोनों खुश हो जाएंगे, जब भी मुझे अपनी बेस्टी से बात करनी होगी दोनों एक ही घर में होंगे. बट अपेरेंटली इट इज ट्रू दैट द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस. अगर मेरी तरह आपने भी अपनी जिंदगी की दोस्तियों के कबाड़े अनविटिंग भी किए हैं, आई डोंट वी कंपेयर नोट्स, क्योंकि ले दे कि शायद आप ही मेरे दोस्त बचोगे जिंदगी में. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHI.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: हेलो दोस्तों, वहां से मत उठाओ यार। हेलो
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
2: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: सामान
3: उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Oh no!
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: The reason you're sticking on with your girlfriend is because आपको उसकी मम्मी secretly hot लगती है, but मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी. Promise.
0: The secret box.
1: Also because of secret box है. अगर आपके पास एक ऐसी confession है, feel free to hit me up on Insta या FB. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना. नाम के spelling है ROCHIE. Send me your confession with your number all in one message and I'll call you like I call my mystery caller. Hello mystery caller.
2: हाय रोशी,
1: गेम शो.
2: ठीक हूँ, ठीक हूँ.
1: अच्छे,
2: मुझे आपसे कुछ शेयर करना है.
1: करो ना.
2: तो मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा, काफी अशेम्ड भी हूँ मैं ये बोलते हुए, पर आई डोंट नो हाउ टू से. सो मेरा बॉयफ्रेंड एंड आई वर टॉकिंग एंड आई वाज ड्रंक ऑन दैट कॉल एंड काफी ड्रंक, मतलब आप समझ लो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ. एंड देन वी केप्ट टॉकिंग, इट एंडेड अप इन अ फाइट और काफी आर्ग्यूमेंट हो गई. बहुत बुरा भला बोल दिया यार, प्रॉब्लली मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोल दिया. एंड देन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया.
1: ओके, व्हिच इज फेयर.
2: एंड या आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम बिकॉज आई डिडंट वांट टू हैव एनी फर्दर कन्वर्सेशन. बट नेक्स्ट डे the whole day I kept waiting for his call without realizing ki maine usse block kar diya.
1: Oh babe, that's so dumb. Sorry.
2: I know, I told you, maine pehle bola tha, I felt ashamed while ashamed and weird that how can you I be so stupid.
1: तो आपको पता कैसे चला कि लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज दैट एक सेकंड ही कांट कॉल मी क्योंकि मैंने ही उसे ब्लॉक किया है.
2: या मतलब ये सब हुआ जब आई स्टार्टेड टेक्स्टिंग हिम. बिकॉज टेक्स्ट सो यू कैन स्टिल डू. सो मैंने टेक्स्ट किया उसे कि तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है, इतनी लड़ाई हुई है एंड यू डिडंट इवन केयर टू कॉल मी. एक बार तो दिन में फोन कर सकता था तू, व्हाई व्हाई वुड यू नॉट. उसने बोला बेबी तुमने मुझे ब्लॉक कर.
1: मैं मर जाना चाहती हूँ हंसते हंसते. There could not have been a better confession than this. You poor thing, yaar. I'm feeling so bad.
2: Roshi, I would suggest आप mic drop कर दो क्योंकि I'm sure के बाद कुछ बोलने को है नहीं.
1: ऐसे कैसे बेबी डॉल माइक ड्रॉप है ना कुछ करने के लिए. ये रहा.
3: You've been Roshified.
1: You should feel a little bit better, nahin, don't you think?
2: Yeah.
1: Agli baar na, when you're getting drunk, just make sure that if you're blocking someone, you should write it down somewhere. Post it par, aur usse chipka dena apne bathroom ke mirror pe, taki agle din when you recover your senses, you will know what you've done. It was amazing talking to you, mystery caller. You're the best. Seriously.
2: Thank you.
1: Oh God, thank you. और अगर आप भी ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह absolutely crazy AF हैं, you are totally a part of the tribe, man. So hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, मैं हूँ आपकी ब्रोशी. नाम के spelling ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
2: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बाहर कितनी भी गर्मी हो, दिल सिर्फ गर्मी से पिघलते नहीं है, दिल प्यार से पिघलते हैं। और मेरे एक्स ने रिसेंटली क्या काम किया है, मेरी आंखों से प्यार के आंसू निकलने लग गए थे भाई। उसने एक कार्डबोर्ड का पीस मंगाया, उसके ऊपर उसने कलर किया क्रेयॉन से पर्पल, और उसके ऊपर उसने ब्लैक एंड रेड क्रेयॉन से लिखा मुझे, एंड ऑफ कोर्स पोर्टेड इट टू मी विच सेड, यू आर माय ट्रू नॉर्थ स्टार, एंड एक हार्ट हार्ट हार्ट हार्ट। एंड आई वाज लाइक, हे भगवान, इसने अपने हाथों से कार्डबोर्ड मंगा कर, क्रेयॉन्स मंगा कर, अपनी भद्दी हैंड राइटिंग में इतना प्यारा लेटर लिखकर भेज दिया। भगवान, क्या मुझे इसे फ़ोन करके वापस इसके पास चले जाना चाहिए। एंड बिफोर आई कुड डू दैट, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन कर दिया एंड मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया, बिकॉज माई मॉम इज़ माई वॉइस ऑफ रीज़न। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके एक्स ने कुछ अनएक्सपेक्टेडली अडोर्ब्स किया एंड यू जस्ट विश यू वर बैक इन द रिलेशनशिप विद देम जस्ट फॉर दैट वन स्मॉल जेस्चर? अगर हाँ, देन यू एंड आई आर प्रेटी सिमिलर, वी शुड प्रेटी मच कंपेयर नोट्स। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, फाइंड मी ऑन योर सोशल मीडिया एंड व्हाइल यू डू दैट एंड हिट मी अप, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba ki jai!
2: Calm down, my bhagjano. Kya tumhari boss ne is baar bhi tumhe phir se sirdard de diya? And now you don't know ki is sirdard ke saath aap date par kaise jaoge? Don't worry about it. Aapko dawai lene ki koi zarurat nahi hai. Pehle meri ye home remedy try karke dekho. I have a feeling that's exactly what you need. Ek cup pani mein काफी सारा जिंजर यानी कि अदरक इसे कद्दूकस करके उबाल लो एंड ये बहुत ही पोटेंट जिंजर ड्रिंक गर्मा गर्म एज अ जिंजर टी पी लो. चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके देखो बिकॉज रिसेंटली साइंस ने इसे कंफर्म कर दिया है कि जिंजर की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एक्चुअली हेल्प यू डील विद पेन इन अ वे फास्ट मेथड एंड अ क्लेवरर विदाउट द यूज ऑफ मेडिसिन वे. एंड बिफोर यू नो इट ना कि सिर्फ आपका सर दर्द भाग जाएगा बट योर बॉडी विल फील so relaxed that aapki date from just a normal good date will become a perfect date. Aur jab aisa ho jaye, mujhe thank you bolne ke liye for these two things, you can hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. You can also call me your Roshi Baba. And while you hit me up, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. Buscábala, buscábala, sacábala. ¡Trápala! ¡Burga, burga! ¡La vida para la burga! ¡Mirchi, burga!
1: Hello,
2: Mr. Gotham. Sir, may I actually ask sir, the request karna chahta hu. Main sir, aap suna aap wo singing, winging, sikhate hai sir. To sir, gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na, wo sir thoda different hote hain.
1: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi.
2: Pehle mohalle mein hamare snake nikla tha. To snake ka hi ghus gaya tha. To mere ko pehle wale bolte hain ki bhai aaja tu, aaja snake nikal de. Sir, main aapko main peshkash kar raha hu. Sir, har tarah ke gaane gaa leta hu. Lekin meri speciality hai snake mein. Sir, nagin ka hai sir, nagina. फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
1: सर, कुछ गा के सुनाएगा
2: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है एनाकोंडा आपने एनाकोंडा फिल्म देखी है
1: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ
2: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
1: एनाकोंडा में कौन से गाने
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया एनाकोंडा में यही बात है मेरे लिए मैं एक पेशकश कर रहा हूँ Tane dole, mera mane dole, mere gale ka gaya gujare re, kone bataye basuriya.
1: सुन ले बात
2: मेरी बात
1: हाँ सुन पहले बात
2: हाँ सर
1: और इसे बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है सर बोलिए
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते समझ गया ना तू बात है
2: जी सर
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका

0: सफेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: पटाख।
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
2: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: लिसनर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: तुम्हारे दिल के साथ तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग के साथ कौन कौन खेलता है? आई वुड सजेस्ट वी शुड प्ले अ गेम वेयर आई गेट टू टेस्ट योर ब्रेन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. मैंने अभी जो बोला है ना, ऐसे लग रहा है मैं आपका दिमाग आपके लिए खोपड़ी से निकाल के लैब में टेस्ट करूंगी. ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट प्लेइंग अ लव गेम विद यू. इफ यू आर इंटरेस्टेड सेंड मी योर नंबर एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल्ड ईश्वर. हाई ईश्वर, क्या आप मेरे साथ लव गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, तो आज ना मैं तीन सवाल पूछूंगी, यस और नो में आपको जवाब देना है, ट्रूथ और डेयर है, ठीक है?
2: Okay.
1: आपका पहला सवाल है और आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. मीरा राजपूत की जो क्रश था, ठीक है, उन्होंने उससे शादी की और उस क्रश का नाम है शाहिद कपूर. ट्रू या फॉल्स? है
2: ट्रू.
1: ये तुक्का मार रहे हो या पता है आपको?
2: ये तो पता है मुझे.
1: अच्छा, सो बेसिकली मीरा राजपूत जब बड़ी हो रही थी, शाहिद कपूर की पिक्चरें देखती थी, शी वाज टोटली इन लव विद हिम. उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि शाहिद कपूर से शादी हो जाएगी. आपको मीरा राजपूत अच्छी लगती है?
2: नहीं.
1: आपको शाहिद कपूर अच्छा लगता है?
2: नहीं.
1: तो आपको ऐसे फालतू की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पता होती है फ्री फंड में, करेक्ट?
2: ये ड्यू टू इंस्टाग्राम.
1: ओके, लेट्स टेस्ट योर नेक्स्ट लाइक बॉलीवुड नॉलेज, ठीक है? आपका अगला सवाल है, सैफ अली खान और करीना कपूर की अरेंज मैरिज हुई थी, ट्रू और फॉल्स?
2: फॉल्स.
1: असलियत क्या है?
2: उनकी लव मैरिज हुई थी ड्यूरिंग टशन मूवी, उनका अफेयर स्टार्ट हुआ था और आई गेस उसके कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो गई थी. अभी उनके दो बच्चे हैं, एक उनका क्या तैमूर, दूसरा शायद नाम नहीं पता मुझे.
1: Bro, you are like a typical Bollywood ki chachi ji man. Like, you know everything there is to know about this. Like, tune to sara chitta suna diya. Saif ki kundli ye hai, Kareena ki kundli ye hai. Inke 36 mein se 22 gun milte hai. Whoa! You are very close to Roshification. Teesra sawal puchu aapse.
2: Yes, sir.
1: Gauri Khan ke parents were against her marrying Shah Rukh Khan because unka religion alag tha.
2: I guess so.
1: Tukka maar rahe ho na?
2: Ye tukka.
1: आई लव योर ऑनेस्टी. तो हाँ, ये सच बात है. गौरी के डैड जो थे वो बहुत ही लाइक यू नो स्ट्रिक्ट हिंदू थे और उनके घर में प्रॉपर मंदिर था एंड ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द मैरिज. और इन्होंने अपने शादी को काफी समय तक छुपाया भी था और शाहरुख ने सोचा था कि अपना नाम भी बदल देगा एंड वो अपना नाम बदल के भी गया टू कन्विंस द पेरेंट्स कि यार प्लीज गौरी से शादी करने दो, विच इज अ वेरी क्यूट लव स्टोरी, डोंट यू थिंक? आप प्यार में किस हद तक जा सकते हो ईश्वर?
2: मैं प्यार में किस हद तक जा सकता हूँ? मैं प्यार में इस हद तक जा सकता हूँ कि जिससे प्यार करता हूँ उसे छोड़ दूँ, फिर जाओ तुम खुश रहो, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती
1: है. ये हो चुका आपके साथ? यार दैट्स टेरिबल. रोशिफाई कर दूँ आपको?
2: हाँ बिल्कुल.
1: यार
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: You know what, Ishwar, you're my kind of guy. अगर मैं आपकी जगह होती मैं भी यही करती. I love you.
2: Thank you so much.
1: Love you के लिए thank you नहीं बोलते वे. Happy birthday बोला है तुझे. बोल I love you too.
2: Okay, I love you too.
1: Thank you very much. I said thank you. It was so, so nice talking to you, Ishwar.
2: Now you sound like me.
1: आपसे बात करके बहुत मजे आए, आपसे लव गेम खेल के बहुत मजे आए. इफ यू आर अप फॉर

0: inefficient,
1: very complex,
2: clumsy or
3: confusion ही confusion.
0: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
4: अब मिर्ची खा.
6: Radio Mirchi, it's hot.

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर एक बार चीट कर चुकी है और मैं फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि हमारे रिलेशनशिप का जो ट्रस्ट है रोशी, वो वापस आ जाए?
2: रोशी के डीएम से
1: साहिल ने मुझे ये मैसेज लिखकर भेजा, एंड साहिल, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट जब एक रिलेशनशिप में यू फाइंड आउट दैट योर पार्टनर हैज चीटेड ऑन यू, वो भले ही एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन क्यों ना हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन ट्रस्ट आफ्टर दैट. लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जो कुछ भी हुआ, फिर भी इसके बावजूद यू गाइज आर ऑन द सेम टीम? एक तो ये चीज, दूसरी ये, क्या आप विलिंग टू फॉरगिव एंड मूव ऑन हो या नहीं? क्योंकि अगर आप उसे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और आप सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं द बिटरनेस विल कम बैक लेटर. सो यू हैव टू फिगर आउट कि क्या फॉरगिवनेस आपके दिल और दिमाग में हो चुकी है या नहीं. तीसरी चीज, जब आपकी गर्लफ्रेंड ये कहती है दैट वो एक मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन था, ये कभी फिर से नहीं होगा, हाउ सिंसेयर इज शी? आपको कितना यकीन है कि वो जो कह रही है वो अपने सच्चे दिल से कह रही है? चौथी चीज, कई बार ना जिंदगी में, ये मेरी मम्मी कहती है, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जाने देना चाहिए. हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलतियां सब करते हैं, बट इट्स वाइजर टू लुक अहेड दैन टू लुक बिहाइंड एंड फील बैड अबाउट वॉट हैपन. एंड लास्टली, ऑनेस्टली, अगर आप चाहते हो ना कि आपका रिलेशनशिप इन स्पाइट ऑफ दिस लिटिल ग्लिच चल जाए, डोंट ओवर थिंक इट. इसके बारे में इतना मत सोचो कि पूरा का पूरा रिलेशनशिप छोटा पड़ जाए इन द फेस ऑफ व्हाट हैपेंड विद योर गर्ल एक बार. इफ यू आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फिर आई थिंक कि आपके रिलेशनशिप में एक और चांस अभी भी जिंदा है. गिव इट दैट वन चांस, क्योंकि ऑनेस्टली हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. और अगर आपकी जिंदगी में प्यार है साहिल की तरह, बट यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए।

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने नोटिस किया है कि हर ब्रेकअप के बाद हर इंसान कुंभकर्ण की छठी औलाद बन जाता है। ब्रेकअप के बाद इतनी नींद आती है बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट टू बी अवेक एंड फेस द फैक्ट कि आपकी सर्विसेज एज अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टर्मिनेट कर दी गई है। बट द लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था फाइनली जब मैंने सोना खत्म किया अपने बॉयफ्रेंड पर कि आई डिसाइडेड कि मैं उसे एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखूंगी। इट हेल्प्स दैट आई बीन अ जर्नलिस्ट और मैंने इसे ना 5 पेज की चिट्ठी लिखी और पहले मैंने सोचा कि मैं उसे जब वी मेट के फैशन में फाड़ वाड़ के फ्लश कर दूंगी। देन आई थॉट क्यों फ्लश करूंगी, इतनी प्यारी, इतनी दुख भरी, इतनी एसिडिक चिट्ठी है। उसके पोस्टल एड्रेस पर वो चिट्ठी मैंने पोस्ट की विद सम ऑफ आवर मोस्ट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स टुगेदर एंड ट्रस्ट मी आई नो फ्रॉम कॉमन फ्रेंड्स की वो चिट्ठी पढ़ने के बाद ही वो सेकंड गैसिंग की यार अब मैं रोशी की जिंदगी में वापस कैसे जाऊं। बट उस चिट्ठी ने कमाल कर दिया था एंड आई डिड नॉट वॉन्ट हिम बैक। तो अगर आप भी ऐसे नींद के दौर में गुजर रहे हो आफ्टर योर ब्रेकअप एंड यू रियली वॉन्ट टू हील योर हार्ट, चिट्ठी लिख डाल और पोस्ट कर डाल एंड वंस यू फील हैप्पी AF मेरे साथ ये अच्छी न्यूज शेयर नहीं करोगे। और वो करने के लिए यू कैन फाइंड मी इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है, आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात से
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: ऐसी करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: The reason you're sticking on with your girlfriend is because aapko uski mummy secretly hot lagti hai, but main iske bare mein kisi ko nahi bataungi. Promise.
2: The secret box.
1: Also because of secret box hai, agar aapke paas ek aisi confession hai, feel free to hit me up on Insta ya FB. Mera naam chhe Mirchi Roshi, kaam chhe aapse pyar karna. Naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. Send me your confession with your number all in one message and I'll call you like I call my mystery caller. Hello mystery caller.
3: Hi Roshi.
1: Game show.
3: ठीक हूँ, ठीक हूँ.
1: अच्छे,
3: ठीक. मुझे आपसे कुछ शेयर करना है.
1: करो ना.
3: तो मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा, काफी अशेम भी हूँ मैं ये बोलते हुए, पर आई डोंट नो हाउ टू से. सो मेरा बॉयफ्रेंड एंड आई वर टॉकिंग एंड आई वाज ड्रंक ऑन दैट कॉल एंड काफी ड्रंक, मतलब आप समझ लो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ. एंड देन वी केप्ट टॉकिंग, इट एंडेड अप इन अ फाइट और काफी आर्ग्यूमेंट हो गई. बहुत बुरा भला बोल दिया यार, प्रॉब्लली मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोल दिया. एंड देन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया.
1: ओके, व्हिच इज फेयर.
3: एंड या आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू हैव एनी फर्दर कन्वर्सेशन.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

अब ये पीयूष मिश्रा भी मेरा दिल लेकर ही मानेंगे, उन्होंने ये लाइंस लिखी हैं, जरा गौर फरमाइएगा। औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके, ध्यान से सुनना हाँ, औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके, कमबख्त इश्क में क्या गिरे, मुफ्त में नीलाम हो गए। अगर आपको भी जिंदगी में ऐसा ही लगता है ना, तो सही जगह पहुंचे हो आप, क्योंकि आप और मैं हम दोनों बैठकर पूरी रात इस पॉइंट से कल सुबह तक प्यार के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है दैट्स ट्रू फॉर यू, देन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक। एंड व्हाइल यू डू दैट, दो चीजें जरूर याद रखना, पहली ये कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और दूसरी ये कि जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोड्स।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कॉन्टेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम। लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉक 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम्स में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना।
4: नंबर 20।

0: नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, 4 स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये, जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। No loud payoff, no screaming hook, बस माहौल, the atmosphere, वो late night loneliness, वो अकेलापन, और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। The writing itself feels tired, in a good way, it's exhausted, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल percussion, ambient synths, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटिफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, From Bandar।
1: Number 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार हेलो
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
1: हाँ जी बोलो
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
1: हाँ जी देते
2: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठा यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
1: कहाँ भिजवाना
2: है मैं आपको बता दूँ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाता
1: है जी उठवा लेंगे उतना ही हम
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
1: किसको जी
2: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
1: क्या गिर गया
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
1: भाई साहब क्या उठवाना है
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
1: सामान उठवा
2: या, तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10

माशुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2. शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड. कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है. लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है. अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है.

और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए. प्रीतम हैज कॉपीड अगेन. देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ. हाँ, उनका पास थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट. लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है. महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे. एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन. उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं. तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है. और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो. What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike Mashuka, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge. Number 8.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर, हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आए हैं, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क, और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4, लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है इमोशन है क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर एंड यार क्या लेगेसी है इनकी हीरो नंबर वन कूली नंबर वन राजा बाबू पार्टनर बीवी नंबर वन मुझसे शादी करोगी हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये All directed by David Dhawan. लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो हॉलीडेज पे जाओ लाइफ एंजॉय करो लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म में वो वार्म्थ वो मिडिल क्लास मैडनेस वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है
1: See, Papa, what we want as children, if I can tell you, you know, people, or any child wants is that if you have, आपने पैसा कमाया नाम कमाया शोहरत कमाया तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा आई कीप टेलिंग देम दैट रिलैक्स आपको हॉलीडे जाना है फर्स्ट क्लास की टिकट कर आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो
1: इनको अंडा पाव ही खाना है इनको वही
2: मैं बड़ा ही वही हुआ मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए बट वो मजा अलग ही था ना एंड अ स्ट्रगल एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल ये बोलते कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है डूड व्हाट अ लाइन डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत नंबर वन

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

हर कलाकार के दो चेहरे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक चेहरा प्रोफेशनल लाइफ का, एक चेहरा पर्सनल लाइफ का, जिसे वो अक्सर छुपा छुपा के रखते हैं या उतना ही दिखाते हैं जिससे उनके प्रोफेशनल लाइफ के चेहरे पे कोई असर ना पड़े। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इस मामले में बिंदास निष्कपट होते हैं। वो जैसे पर्सनल लाइफ में होते हैं वैसे ही खुद को बताते हैं, और ऐसे ही कलाकार थे वो जिन्हें हिंदी सिनेमा का फर्स्ट शोमैन कहा जाता है, राज कपूर साहब, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ हिम। उनमें वो सारे फ्लॉज थे जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना। वो लेडीज से फ्लर्ट करते थे, कई बार फ्लर्ट करते करते लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। शादीशुदा होने के बावजूद उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स की, रिलेशनशिप्स की बारे में हम सबने पढ़ा सुना है, और उन्होंने इन सब बातों को कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत की वो था उनका क्राफ्ट, सिनेमा, जिसने उनकी आवारगी को एक सलीका दिया। वो शायर निदा फाजली की कुछ लाइन्स हैं कि बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: क्या बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो।
5: हाय शिवानी।
4: हाय।
5: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
4: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
5: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
4: समाचार?
5: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
4: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
5: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
4: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
5: अच्छा।
4: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
5: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
4: फेवर,
5: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
4: आपको लेनी है क्या?
5: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
4: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
5: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
4: आप सिर्फ
5: मेरी बात से
4: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
5: ये सिर्फ तीन
4: ऐसी करता हूँ।
5: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
4: अपने सिर पे करवा ले
5: शिवानी।
4: हेलो,
5: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
4: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
5: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
4: नहीं
5: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शेरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
4: कुकड़ू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
2: इट पटाक।
6: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

0: आपको पता है डायरेक्टर अनीस बज़मी ने राज कपूर के साथ काम किया हुआ है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1982 की फिल्म प्रेम रोग में सेवेंथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे अनीस बज़मी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर का कितना खौफ रहता था सेट्स पे।
1: बहुत ही टेरर था उनका, कब क्या होगा वही नहीं पता होता था। एंड थोड़े शॉर्ट टर्म भी थे, जब एडिटिंग करते थे तो वो शराब छोड़ देते थे एंड सिगरेट छोड़ देते थे। जब तक फिल्म एडिट होगी, चाहे वो एक महीना हो, दो महीना हो, दस महीना हो, और दोनों चीजों से बहुत प्यार था उनको, तो वो एक इरिटेशन लेवल भी जो है ना वो उस कदर होता था कि आप मतलब बस नाखून जितनी खाली गलती की थी और उसके बाद फिर आप अपनी दशा देखिए क्या होगी।
0: पर एक चीज जरूर होती थी, फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट्स पे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा डांट डपट मारपीट हो, बाद में मजा भी उतना ही होता था बिकॉज पार्टीज इतनी सारी होती थी कर्टसी राज कपूर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rg.charu, rg.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

ये जो इंडिया का रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, इसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो राज कपूर साहब को भी जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सीन कुछ यूं था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे रशिया और इंडिया के बीच अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे, बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जिसकी वजह से इंडियन फिल्में रशिया में रिलीज हुई। एंड समहाउ राज कपूर के किरदार जो उन्होंने अपनी फिल्मों में प्ले किए थे, उन किरदारों की इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, उनकी स्ट्रगल्स और एस्पिरेशन से रशियन लोगों ने इतना कनेक्ट किया कि उनको एक अलग तरह की उम्मीद और खुशी मिली उन फिल्मों से, उन किरदारों से। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राज कपूर बिकेम दिस सेंसेशन, दिस आइकॉन इन रशिया। मतलब राज कपूर को बिना वीजा रशिया में एंटर करना अलाउड था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि राज कपूर जब मॉस्को में एक टैक्सी में बैठे तो वो टैक्सी सड़क पे नहीं हवा में चल रही, क्योंकि लोगों ने खुशी में उस टैक्सी को उठा लिया था। राज कपूर के गाने बिकेम एंथम्स इन रशिया, जो आज भी वहाँ प्ले होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

0: रणधीर कपूर को डायरेक्शन सीखने के लिए राज कपूर साहब ने डायरेक्टर लेक टंडन के पास भेजा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो रणधीर कपूर जब ये डायरेक्शन सीखने के लिए घर से निकलने लगे तो राज कपूर साहब ने उनको क्या कहा? रणधीर कपूर ने एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना, ये वैल्यू सिस्टम है। राज कपूर जी ने हमको सिखाया कि पैसों की कदर होनी चाहिए। वी वर ब्रॉट अप दैट वे, बस में गए, ट्रेन में गए, पर जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। कोई भिकमंगा आया तो हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है। घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से, और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी और लेके मेरे पिताजी के पास गया। बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया और कमाओ और गाड़ियां लो। बोलो पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर है, एक तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है, ये तुम्हें जरूरत है।
0: क्या ही मजा मस्ती ड्रामा चलता होगा कपूर हाउस होल्ड में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: DDLG फिल्म में शाहरुख खान का किरदार राज जो तुनतुना बजाता है, अब तो हम सब जानते हैं कि उसको मैंडोलिन बोलते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जब ये फिल्म शूट हो रही थी ना, तो शाहरुख खान ने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: मैंने पूछा था कि यार आदि, व्हाई डिड यू डिसाइड ऑन अ मैंडोलिन? उन्होंने मुझे बताया कि मैंडोलिन उनका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। उसका एक बड़ा ही कमाल का रीजन है कि व्हाई ही लाइक्ड अ मैंडोलिन। आदि हैज ऑलवेज बीन अ मिस्टर राज कपूर फैन, उन्हें बड़े अच्छे लगते थे। उन्होंने मुझे बताया मोस्ट ऑफ द म्यूजिक और लॉट ऑफ द म्यूजिक दैट इज यूज्ड इन मिस्टर राज कपूर फिल्म्स was from the mandolin.
0: Well, इस फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज, राज कपूर के नाम पर ही था। एंड राज कपूर खुद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, अकॉर्डियन, बैक पाइपर, पियानो, हारमोनियम, तबला एंड मैंडोलिन भी। और उनकी फिल्मों के गानों में जो मेरा फेवरेट है जिसमें मैंडोलिन यूज हुआ है ना, वो ये वाला है जो अब हम सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है? सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाएंगे?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कोंडा में कौन से गाने?
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
3: सर साहब
4: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा।
3: सुन ले बात सुन पहले बात सुन। और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है ना बंद कर रहा
4: सर बोलिए।
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
4: जी सर।
3: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Sweet के साथ only on मिर्ची It's hot
1: Yep again
2: तेरा क्या होगा कालिया
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
2: अब मिर्ची खा
4: Radio Mirchi It's hot
5: पुरानी जीन्स With Charu only

0: राज कपूर का असली नाम या पूरा नाम रणवीर राज कपूर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो राज उनका मिडिल नेम था और उनके असली नाम पे ही रणवीर कपूर का नाम है। और एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में रणबीर ने ना राज कपूर साहब के साथ जुड़ी अपनी एक बचपन की बहुत ही प्यारी याद शेयर की थी, सुनिए।
1: मिस्टर राज कपूर पास्ड अवे व्हेन आई वाज रियली यंग, आई वाज अराउंड 6 इयर्स ओल्ड, बट आई रिमेंबर दैट व्हेन वी वर रियली यंग, ऑल ऑफ अस, माय सिस्टर मी, करीना, लोलो, माय अदर कजिन्स फ्रॉम दिल्ली, ही यूज्ड टू कॉल अस टू द रूम, यू नो, एंड ही हैड ऑल दीस टॉफीज, यू नो, व्हिच ही यूज्ड टू बाय व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल, एंड ही यूज्ड टू हाइड इट इन हिज रूम। सो ही यूज्ड टू लाइक टेक ऑल सलाम्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, मेक अस डू सलाम, give him a kiss, do a little dance for him, and then he used to give us one toffee. And that getting that toffee was a very big deal. You know, I still have remember that taste.
0: आपको पता है जब रणबीर से राज कपूर के ऊपर बायोपिक बनने की बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जब तक किसी बायोपिक को आप ईमानदारी से न बना पाए तब तक नहीं बनाना चाहिए, और अगर ये बायोपिक ईमानदारी से बना दी गई तो शायद कपूर खानदान ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। चलिए बायोपिक न सही, लेकिन उनकी अमेजिंग फिल्में हैं जिसके अमेजिंग गाने हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर की वो साइड जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं अबाउट दी अदर साइड ऑफ राज कपूर। राज कपूर में वो सारे ऐप थे जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं। वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, औरतों के साथ फ्लर्ट करते थे और कई बार लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स, उनके रिलेशनशिप्स की बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे इंटरव्यूज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज में है। जैसे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि जब राज कपूर वैजयंती महाराज जी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे तब उनकी मॉम यानी कि राज कपूर की वाइफ उन्हें यानी कि ऋषि कपूर को लेकर कहीं और रहने चली गई थी। इस रिलेशनशिप को वैजयंती माला ने कम्प्लीटली डिनाई किया और ये कहा कि ये संगम फिल्म को प्रमोट करने के लिए आरके फिल्म्स की पीआर टीम का स्टंट था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जिन भी रिश्तों में राज कपूर इन्वॉल्व हुए ये नरगिस जी के साथ ब्रेकअप के बाद के रीबाउंड रिलेशनशिप थे। वो मुझे कुछ लाइन्स याद आ रही है कि लिपटा है मेरे दिल से किसी राज की सूरत, वो शख्स के जिसको मेरा होना ही नहीं है। अजब रवायत है मोहब्बत की, उसे पाना भी नहीं है, उसे खोना भी नहीं है। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: On 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: राम तेरी गंगा मैली फिल्म का म्यूजिक कैसे बना था?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पर राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने ये बात शेयर की थी, सुनिए।
2: एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे, वहाँ रविंदर जैन जी वो गाना गा रहे थे, एक राधा एक मीरा, सुना वाह वाह वाह वाह, बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले ये मेरा प्राइवेट गाना है, बोले ये गाना मेरा हो गया। वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रही है मुझे दे दो। अगले दिन ऐसा करो डब्बू, घर में बोल देना कि शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो इस शहर में मिल सकते हैं। और ठीक है, क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, एक सितार आई है, कुछ सारंगी आई है, पापा आ रहे हैं ना, आने दो, हुआ है, साथ में रविंद्र जैन भी आ रहे थे।
3: मुझे ये दिन याद है।
2: तो मैंने नमरा चादर लगाओ, इधर तकिए वकिए लगाओ, सब बैठे, और दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया, तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है, जा 25,000 का चेक बना के ले आ रविंद्र जैन के नाम।
1: एंड दैट इज हाउ रविंद्र जैन को साइन किया गया था इस फिल्म के आइकॉनिक म्यूजिक के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है एक्टर नील नितिन मुकेश एक बार बचपन में राज कपूर की कोई फिल्म देख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उसमें एक गाना आया तो नील की फैमिली ने उनको बताया कि ये गाना तुम्हारे दादू मुकेश गा रहे हैं। तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तो राज कपूर गा रहे हैं। हम सबको बचपन में ऐसा लगता था ना कि वो जो एक्टर्स गाना गा रहे हैं वो खुद गा रहे हैं। और कुछ आवाजें एक्टर्स पर ऐसे सूट होती थी जैसे उनके लिए ही बनी हो, मेड इन हेवन। जब मुकेश जी का निधन हुआ था 1976 में तो राज कपूर रो पड़े और बोले कि मैंने अपनी आवाज खो दी। 100 से भी ज्यादा गाने गाए थे मुकेश ने राज कपूर के लिए। पहला गाना जहां 1948 में आग फिल्म के लिए था, वहीं आखिरी गाना 1975 में धर्म करम मूवी के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। अच्छा, ये सारे गाने जो मुकेश जी ने राज कपूर साहब के लिए गाए, उनमें से सबसे प्यारा पता है कौन सा है? अनाड़ी फिल्म का ये वाला। सुनिए मिर्ची पर।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी।
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात से
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता।
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना। शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं
4: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: याद कर रहे हैं हम उनको और बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ राज कपूर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज कपूर साहब को गुस्सा बहुत आता था, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्म मेकर थे वो, खास करके जिन फिल्मों में उनके बच्चे काम कर रहे होते थे। एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म बॉबी के पहले सॉन्ग शूट के बारे में क्या शेयर किया था।
1: मेरी जिंदगी का पहला गाना था, मैं शायर तो नहीं है। So I was very excited. I got on the sets. I saw my father there and that little insecurity crept into me. Where is the dance director? My father has to call him Saab. I said, Saab, choreographer, dance director नहीं है। He said, choreographer, dance director की क्या जरूरत है? गाना कैसे गाऊंगा? कौन करेगा? खड़े रहो उधर। I said, मैं कैसे कर सकता? I've never done it. So do it for the first time, करो। I was looking around. He said, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई choreographer या dance director बुलाऊंगा, तुम नए हो, वो जो करेगा तुम उसकी नकल करोगे, और जो नकल होगी उस आदमी ने शशि कपूर, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी सबको वही करवाया होगा, और जब तुम करोगे तो लोग बोलेगा अरे ये तो शशि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। तो मेक योर ओन आइडेंटिटी इन योर लाइफ, गो स्टैंड देयर, सिंग द सॉन्ग योरसेल्फ, देन ओनली यू विल लर्न।
0: ओ भाई भाई भाई, सुन के ही मुझे तो गूज़बम्स आ गए, डर लग गया एकदम से। बट दैट इज हाउ ही वॉज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं द अदर साइड ऑफ राज कपूर साहब। और ये बात तो जग जाहिर है कि राज कपूर साहब और नरगिस जी बहुत लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप में थे। 21 साल की उम्र में राज कपूर नरगिस जी से तब मिले थे जब वो 16 साल की थी और उनकी इस मुलाकात को उन्होंने बॉबी फिल्म के सीन में रिक्रिएट किया था जब डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात होती है। उसी दौरान लेट 40s में दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और यहीं से उनकी दोस्ती, उनके बीच अट्रैक्शन की शुरुआत हुई। राज कपूर शादीशुदा थे तो भी नरगिस जी उनसे शादी करना चाहती थी। वेल, हमारे देश में मैरिज एक्ट 1955 में आया, उससे पहले एक मर्द का एक से ज्यादा शादियां करना बहुत ही नॉर्मल माना जाता था। राज कपूर नरगिस जी से कहते रहे कि वो उनसे शादी करेंगे लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मना कर दिया। और इस तरह से दिल टूटने के बाद नरगिस जी राज कपूर की जिंदगी से और आरके स्टूडियोज की फिल्मों से हमेशा के लिए चली गईं। इसके 2 साल बाद जब उन्होंने सुनील दत्त से शादी की तो ये बात राज कपूर बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी नाजुक सी मेल ईगो काफी हर्ट हो गई। वो शराब के नशे में धुत रहते थे, बदहवासी में सिगरेट से अपना हाथ जला लेते थे, किसी के भी कंधे पे सर रख कर रोना शुरू कर देते थे। काफी इंटरव्यूज में उन्होंने नरगिस जी का नाम डायरेक्टली ना लेते हुए उन्हें काफी बुरा भला कहा। अक्सर वो प्यार बहुत टॉक्सिक हो जाता है जिसको मंजिल नहीं मिलती है। ऐसा ही था नरगिस जी और राज कपूर साहब का प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: मेरा नाम जोकर, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आज तो इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, मेनली इसकी लेंथ की वजह से। 4 घंटे से ऊपर की थी ये फिल्म। एक बार एक कॉमेडी टीवी शो में सुनिए राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म के बारे में क्या शेयर किया था।
1: बहुत प्यार से, लगन से बनाई थी फिल्म, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जोकर वाज डेफिनेटली राज कपूर फेवरेट पिक्चर। जब पिक्चर नहीं चली, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। हर पिक्चर की भी अपनी अपनी, जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी किस्मत होती है, बट जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो माँ बाप के फेवरेट हो जाता है। मुझे अच्छा लग रहा है ये बोल के कि टुडे मेरा नाम जोकर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट पॉइंट। मेरा नाम जोकर इज अ बिग हिट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। जो तब नहीं चली थी, जब लोगों को समझ नहीं आई, आज बहुत समझ आती है और बहुत अच्छी लगती है उनको।
0: उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि बहुत बोर्ड थी उस टाइम के हिसाब से, मे बी वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। वेल, ये जो कॉमेडी को ट्रेजेडी के साथ मिला के जो सोशल मैसेजेस देते थे, यही शायद अमेजिंग क्राफ्ट था इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन का, राज कपूर का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, अप, अप, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, अप, अप, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है, और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता

0: Milci. Escava la puscava la sacabana. Rabala. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Milci, burga.
2: Alo.
3: Alo, usta, vahan se mat uthao, yaar. Alo.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन?
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है,
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi.
1: Isca bala, pusca bala, saca bala. Rabala. Burga, burga. La vie bala, burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय
3: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है, आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात से
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं बदतमीजी
3: नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
1: इट पका।
4: लिसनर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
1: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: प्यास है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: कौन बोला मुझसे न हो पाएगा।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बच्चों के टेंशन या एंजाइटी के टाइम पर पेरेंट्स उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये सिस्टर आपने जो कहा ये तो बच्चों के हिसाब से होगा कि बच्चों को क्या करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स पे भी बहुत प्रेशर आ जाता है कि मेरा बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा स्कूल जाना, उसको बहुत तकलीफें हो रही है, और ज्यादातर बच्चे इस एज में आके बहुत कुछ शेयर नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा चुप चुप रहता है, अकेले में है एक्सेट्रा। सपोजिंग ये प्रॉब्लम एक पेरेंट के लिए भी सॉल्व करना हो कि भाई बच्चा नहीं जाना चाहता, तो आपने कहा बच्चे का अगर उद्देश्य क्लियर है तो धीरे धीरे वो मार्ग पे सफल हो जाएगा। लेकिन जब एक पेरेंट देख रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो पेरेंट को उस समय क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए?
4: पेरेंट को जरूर बच्चे से बात करनी चाहिए, पर कई बार आप देखें पेरेंट्स बातचीत करते हैं पर उसका बहुत रिजल्ट क्यों नहीं निकलता, क्योंकि बच्चा एक स्ट्रगल से गुजर रहा है और उसके स्ट्रगल का इम्पैक्ट पेरेंट पर पड़ जाता है।
3: हाँ,
4: तो पेरेंट भी अंदर से काफी दर्द में होता है
3: जी।
4: फिर वो जो कॉन्वर्सेशन होती है वो भी थोड़ी सी दर्द में होती है। सी व्हाट हैपेंस, अगर कॉन्वर्सेशन बहुत पॉजिटिव भी है लेकिन मदर पेरेंट से एक वाइब्रेशन रेडिएट होता है।
3: हाँ, चिंता की,
4: चिंता का है, फियर का है, वरी का है, और हम कह भी कह देते हैं कि मुझे इसलिए चिंता होती है क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है।
3: जी बिल्कुल,
4: लेकिन प्यार का वाइब्रेशन बहुत अलग है।
3: हाँ, तो प्यार की वाइब्रेशन नहीं जा रही है इस वक्त, सिर्फ चिंता और भय का जा रहा है।
4: केयर एक अलग चीज है, वरी एक अलग चीज है। यू केयर फॉर योर चाइल्ड बट यू वरिंग फॉर योर चाइल्ड,
3: राइट?
4: सो वरिंग इज दैट इवन व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू योर चाइल्ड, आप उसके बारे में सोच रहे हैं
3: जी,
4: और आप जो सोच रहे हैं वो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहा है।
3: हाँ,
4: मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसके भविष्य का क्या होगा, वो बहुत दर्द में रहता है। दिस इज अ काइंड ऑफ फियर वरी दैट यू आर गोइंग थ्रू। नाउ व्हेन यू सिट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन यू आर रेडिएटिंग दैट पेन टू द चाइल्ड। इसलिए कई बार बच्चे बात नहीं करना चाहते, वो कहते गिव मी माई स्पेस, वो अकेले बेटर फील करते हैं।
3: हाँ,
4: वो आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपसे बात करके उनका दर्द कम होने की जगह
3: बढ़ जाता है।
4: बट उनका दर्द कोई और कम भी नहीं कर सकता, मतलब फ्रेंड्स वो नहीं कर सकते जो पेरेंट्स कर सकते हैं, जो इमोशनल सपोर्ट उनको चाहिए।
3: हाँ, हाँ,
4: जो उनको सिर्फ सपोर्ट नहीं, पावर चाहिए।
3: हाँ,
4: उस समय अपने चैलेंज को डील करने के लिए। सो पेरेंट्स विल हैव टू बी अ लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम द पेन ऑफ द चाइल्ड,
3: तभी वो उनको हेल्प कर पाएंगे। नॉट फ्रॉम द चाइल्ड, हाँ बहुत जरूरी है। हाँ,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि हेलो विशाल और सिस्टर श्रेया, मेरा क्वेश्चन है, मैं अपने काम का स्ट्रेस घर ले आती हूँ, फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इस हैबिट को कैसे बदलूं? आई थिंक ये बहुत लोगों का सवाल है सिस्टर।
3: काम का स्ट्रेस तो घर पर आना ही है, क्योंकि स्ट्रेस को ये थोड़ा ना पता चलता है कि अभी ऑफिस से घर आ गए, वो तो एक संस्कार बन गए। काम को एंजॉय करना शुरू करें। अगर आपको ऐसा लगता नहीं, काम में तो स्ट्रेस जायज है लेकिन घर में खुश रहना है, ये नहीं हो सकता है।
2: सही बात है।
3: स्ट्रेस क्या फीलिंग है? एक पेन की फीलिंग है, डिस्कम्फर्ट है, प्रेशर है। तो आप अगर अपने काम को एंजॉय करेंगे तो आप घर में भी उसी खुशी को लेकर के आएंगे। पर दो इमोशंस अलग नहीं हो सकते कि ऑफिस में तो हम स्ट्रेस्ड आउट रहे, डिप्रेस्ड रहे, एंग्री रहे, और घर आए तो एकदम खुश हो जाए, वो नहीं पॉसिबल।
2: एक तो खुश रहो, अपना काम खुशी से करो, दूसरा है अगर कोई कारण से स्ट्रेस है तो क्या कर सकते हैं?
3: स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ फीलिंग। जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि स्ट्रेस एक पेन की तरह होता है, एक मैसेंजर है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप कहेंगे काम का स्ट्रेस है, कोई कहेगा ट्रैफिक का स्ट्रेस है, कोई कहेगा हेल्थ का स्ट्रेस है, कोई कहेगा रिश्ते का स्ट्रेस है। यही तो ना, बाहर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, उस चीज का प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया। एरिया क्या है? इनर पावर टू कोप।
2: अगर वो बढ़ा देते हैं,
3: जितनी इनर पावर को बढ़ाते जाएंगे, जितना इनर रेजिलियंस को बढ़ाते जाएंगे, उतना एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट आपके ऊपर कम
2: पड़ेगा।
3: एक्सटर्नल फैक्टर को एकदम खत्म कर देना
2: पॉसिबल नहीं, आपके हाथ में नहीं।
3: हम में से किसी के हाथ में भी नहीं। हम कहें कल से हम मुंबई में उठे, ट्रैफिक ही नहीं हो, सड़कें बिल्कुल खाली हो, मेरा बॉस गुस्सा ही नहीं करे, और डेडलाइन टारगेट तो हो ही नहीं स्कूल में, इट्स नॉट पॉसिबल।
2: तो इनर पावर बढ़ाएं।
3: हम वैसे कोशिश प्रेशर हटाने की करते हैं, पर कहां तक हटाएंगे? आज आप जैसे स्कूल में, हम पहले भी बात कर रहे थे, हमने एग्जाम हटा दिए, कहां तक हटाएंगे? अब पढ़ाई तो नहीं छोड़ देंगे ना।
2: तो इनर पावर को बढ़ाएं। आई थिंक कई बार अगर आपने स्ट्रेस्ड को अंग्रेजी में लिखा है तो उसको रिवर्स जब पढ़ते हैं तो डिजर्ट्स स्पेल करता है। तो आप इनर पावर को डिजर्ट्स की तरह खाएं और स्ट्रेस को दूर भगाएं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Orange Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: पेरेंट्स अपने बच्चों के पेन से कैसे डिटैच हो सकते हैं?
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: Parents don't have to be detached from the child, but from the pain of the child.
5: And how will you be detached from the pain of the child? आपको पता है कि आपके भी जीवन में बहुत बातें आई थी।
4: बिल्कुल, आपने हैंडल कर ली।
5: हाँ, ये सी आपका बच्चा नहीं है, इट्स अ सोल ऑन अ जर्नी।
4: बिल्कुल, आपसे अलग है।
5: हाँ, उसकी यात्रा में भी कुछ बातें तो आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ स्ट्रगल्स आएंगे, कुछ सैक्रिफाइसेस आएंगे। आपको उसको एम्पावर करना है,
4: बस।
5: दैट इज द रोल ऑफ अ पेरेंट। आप ट्रस्टी हैं, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है उनको एम्पावर करने के लिए। अपने को याद दिलाएं, पहले अपने को एम्पावर करें,
4: फिर उसको करें। ओके,
5: जर्नी है, जर्नी में होता है, कुछ ना कुछ होता है। नाउ व्हेन यू आर एम्पावर्ड, अब आप उससे बात करेंगे ना, दर्द में नहीं लेकिन कंप्लीट स्टेबिलिटी में, तो उसको सहारा लगता है।
4: हाँ बिल्कुल, और फिर उस समय वो ओपन कम्युनिकेशन भी करेगा, आप उनको गाइड भी कर पाएंगे चॉइसेस की तरफ और फिर उसके उद्देश्य की तरफ। तो बहुत सही कहा कि भाई,
5: उसको एक पावर मिलती है कि मैं कर सकता हूँ। पता नहीं पेरेंट में ये कितनी बात होती है, जब पेरेंट एक बच्चे को कहता है ना हो जाएगा,
4: तो हो जाता है।
5: हाँ, उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है। इट इज दैट बॉन्ड कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को पावर दे रहे हैं।
4: बहुत खूबसूरत बात,
5: काउंसलर नहीं कर सकता है।
4: बहुत बहुत खूबसूरत बात है। सबसे बढ़िया बात आपने कही कि उसके पेन से डिटैच होना, बच्चे से डिटैच नहीं होना, बहुत खूबसूरत बात।
5: दुनिया का हर व्यक्ति राय दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है, लेकिन पेरेंट्स इसके साथ साथ
4: पावर दे सकते,
5: पावर देते हैं, क्योंकि उनका हर संकल्प, उनका हर वाइब्रेशन बच्चे तक पहुंचता है।
4: बहुत खूबसूरत बात।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सुदीप पुणे से लिखते हैं कि मैं एक वेंडर हूं और मेरे एक क्लाइंट बहुत रूड बिहेव करते हैं, ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो हमारे स्कोप ऑफ वर्क में ही नहीं है। ऐसे में मैं क्या करूं, और जब लोग आपकी ऐसे में क्या करें जब लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाएं या आपको इंसल्ट करें? अपनी गुडनेस को कैसे प्रोटेक्ट करें बिना नेगेटिव हुए? क्योंकि क्लाइंट है तो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते हैं।
3: ना हमें ज्यादा उनको कुछ बोलना है और ना हमें उनके बारे में ज्यादा सोचना है
2: जी।
3: हमें जब हम गुड होते हैं या हम किसी एक क्वालिटी के साथ काम करते हैं तो वो उनके लिए नहीं कर रहे होते
2: जी, अपने लिए कर रहे होते।
3: हाँ, क्योंकि वो करने में हमें सुकून मिल रहा होता है।
2: बहुत बढ़िया बात कही आपने।
3: अगर हम किसी को ट्रस्ट करते हैं, हम किसी से डिग्निटी से बात करते हैं, हम किसी के साथ काइंड है, हम किसी का गलत नहीं करते, तो हम उन पर थोड़ी ना फेवर कर रहे हैं।
2: हमारा संस्कार है वो।
3: जो अच्छाई है वो हमने अपने जीवन के लिए चुनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अच्छाई से मेरा अच्छा भाग्य बनता है।
2: बिल्कुल।
3: तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। जब कोई सही तरीके से बात नहीं करता है तो वो उसका कर्म है, वो उसके संस्कार है। ये भी समझना चाहिए वो दर्द में है, दुखी है। हम बार बार ये चीज कहते हैं कि अगर कोई सही तरीके से बिहेव नहीं करता है तो वो बहुत शक्तिशाली नहीं है।
2: वो तो ठीक है, लेकिन सिस्टर वो कह रहे हैं कि हमारा स्कोप देखो, पैसे मुझे 5 मिलने हैं, लेकिन आप काम मुझसे 10 का करवा रहे हो, पेमेंट भी उसके नहीं दे रहे हो, और मुझसे ऐसा काम करवा रहे हो जो मेरे स्कोप ऑफ वर्क में भी नहीं है। ये करना ही नहीं मुझे।
3: फर्म रह सकते हैं ना।
2: हाँ, लेकिन फर्म रहेंगे तो बोले ठीक है दूसरा वेंडर ले आते हैं,
3: तो फिर क्या कर सकते हैं?
2: सही बात है।
3: आप खुद बताएं, ऑप्शंस हर चीज में देखने होते हैं। अगर वो आपका स्कोप ऑफ वर्क है ही नहीं, जो चीज मुझे आती नहीं, आप 10 बार भी मुझे कहें करने के लिए, तो मुझे कहीं तो फर्म होना ही पड़ेगा ना कि दिस इज समथिंग दैट आई कांट डू और आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये मुझे आता ही नहीं है। तो हम रूड नहीं होते। उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी के अवगुण है। अभी ये भी एक ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे के अवगुण को कॉपी कर रहे हैं। ईंट का जवाब
2: पत्थर से देंगे
3: क्यों?
2: सही बात।
3: वो रूड है, 10 बार भी रूड हो, 20 बार भी रूड हो, आप अपनी बात कहें, 10 बार कहें, 20 बार कहें, असर्टिव होकर के कहें, फर्म रहें, लेकिन आपको उनके अवगुण को उठाने की
2: सही बात। वो रूड बने तो आप डूड बनिए और आप बोलिए ठीक है भाई हमसे नहीं हो पाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बच्चों को एडवाइस देने में और उन्हें कंट्रोल करने में क्या डिफरेंस है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये आपने बात बहुत खूबसूरत कही कि बच्चों को एडवाइस देने वाले, राय देने वाले, ओपिनियन देने वाले बहुत हैं। इससे मुझे एक दूसरी बात याद आ गई कि मार्क ट्वेन जो है बहुत कमाल के लिखते थे, उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी एडवाइस टू यूथ, और जिस तरह से वो लिखा गया वो है कि भाई उन्हें किसी ने कहा था कि आप प्लीज किसी स्कूल या कॉलेज में जाके बच्चों को एडवाइस दीजिए, और वो बहुत सार्केस्टिक तरीके में और बहुत ह्यूमरस तरीके में एडवाइस देते हैं। और उसमें आई थिंक पहली जो एडवाइस थी वो ये थी कि बच्चों को कहते हैं कि भाई मेरी एडवाइस है कि पेरेंट्स की बात हमेशा सुननी चाहिए, जब वो तुम्हारे सामने हो, जब वो नहीं होते तब तुम कुछ भी कर सकते हो। उसमें बात भी कहते हैं कि इसलिए करना आपको जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो तुमसे करवाएंगे। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कभी कभी बच्चे के मन में बैठ भी जाता है कि यार पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाना चाहते हैं अगर मैं नहीं भी करना चाहता हूँ। तो आपने जो बात कही ना कि आपको बच्चे के पेन से डिटैच होना है, बच्चे से डिटैच नहीं होना, दूसरा भी सही है कि आप इतना उसको एडवाइस और गाइड ना करने लग जाए कि वो आपके डर में काम करे बजाय इसके कि आपके स्नेह में काम करे।
4: एडवाइस देना अलग चीज है, कंट्रोल करना अलग चीज है। एक है आप बच्चे से बात करके उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फिर डिटैच होते हैं, ही विल चूज हिज ओन जो रास्ता है। एक है कंट्रोल।
3: जी,
4: कंट्रोल आप कर सकते हैं बच्चे को, बच्चा फियर से काम कर भी देगा बट टिल सर्टेन एज।
3: बिल्कुल,
4: अगर वो छोटा है, डिपेंडेंट है तो वो कर देगा।
3: हाँ।
4: लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो रिबेलियस हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है।
3: हाँ।
4: वो बिल्कुल वो करेगा जो आप कह रहे हैं, उसका उल्टा करेगा।
3: हाँ।
4: तो वो कंट्रोल लॉन्ग टाइम नहीं वर्क करता है, कंट्रोल इनफैक्ट रिश्ते को बिल्कुल तोड़ देता है। क्योंकि आप सफोकेटेड फील करते हैं, आप प्रेशर्ड फील करते हैं, कंट्रोल्ड फील करते हैं, वो वर्क नहीं करता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
1: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
3: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है श्रेया घोष से, बैंडल यानी कि बंगाल में है ये। वो लिखती हैं कि सिस्टर क्या प्लीज बता सकती हैं कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरा ध्यान भटक जाता है, फालतू बातें सोचने लगती हूँ, जैसे स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने स्कूल में मेरे साथ कैसा बिहेव किया वगैरह वगैरह।
2: फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगेन एक स्ट्रॉन्ग माइंड की निशानी है। जब आपका मन शक्तिशाली है, शक्तिशाली मन किसको कहते हैं, मुझे जो सोचना है, जितना समय सोचना है, अपने मन को जहाँ लगाना है मैं लगा सकता हूँ।
1: जी,
2: मेरा मन मेरे कंट्रोल से चलता है।
1: जी,
2: कमजोर मन का क्या हो गया, वो आपको कंट्रोल कर रहा है।
1: हाँ।
2: कह रहे हैं मेरा मन।
1: हाँ।
2: मेरा मन कहते, तेरा मन तो नहीं कहते ना, मेरा मन कहते हैं।
1: हाँ।
2: तो मैं मन का मालिक होना चाहिए।
1: हाँ।
2: लेकिन मन मेरा मालिक बन गया।
1: सही बात है।
2: अब उसको जहाँ जाना है, जो सोचना है, वो कर रहा है।
1: वो कटी पतंग की तरह कहीं भी जा रहा है।
2: कहीं भी जा रहा है। एंड यू लूजिंग टाइम, यू लूजिंग फोकस, यू लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने मन को कैसे शक्तिशाली बनाए वो देखते हैं दो तीन चीजें। एक, आपका मन क्योटिक रहेगा अगर आप बहुत इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं।
1: जी,
2: वो नॉइजी हो जाएगा, वो नहीं कंसंट्रेट कर सकता। ये चीज बहुत समझने की, हमें लगता है हमें बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए, तब हम बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर के उस मन को प्रोसेस नहीं कर पाता।
1: सही बात है।
2: वो भी एक मशीन की तरह है, उसको भी उतनी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे डाइजेशन है, पेट है। आप कितना भी हेल्दी खाना खिला दो,
1: सही बात है, लेकिन अगर ज्यादा खाया तो फिर वो तो इंडिजेशन तो होगा ही।
2: हाँ, मैंने जैसे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, पानी है,
1: सही बात है,
2: बहुत अच्छा है,
1: लेकिन ज्यादा पीने पे बीमारी
2: होगी, ज्यादा पीने पर बीमारी होगी। सिमिलरली फॉर इन्फॉर्मेशन, आप देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, गाने हैं, फिल्म्स हैं, न्यूज है, इतना इतना इतना अंदर ले रहे हैं, द माइंड डजंट गेट इनफ टाइम टू प्रोसेस,
1: राइट,
2: दैट्स व्हेन थोड़ी देर के बाद वो उस प्रोसेस करने में चला जाता है।
1: सही बात।
2: जो आपने सुना है वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में चला जाता है, दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है, थोड़ा मी टाइम निकालना चाहिए टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने कुछ कहा। कोई चीज अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप अगर उसको एनालाइज करके, उसको वर्क करके, उसको क्लोजर नहीं देते
1: तो चलता रहेगा,
2: तो वो चलता रहेगा, फिर वो पास्ट बन जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि 80% टाइम तो हमारा मन या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्यों? आपने उसी दिन उसको लेट को नहीं किया।
1: जी।
2: उसको क्लोजर नहीं दिया, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, अपनी हीलिंग नहीं करी। सम 20 मिनट्स, 10 मिनट्स जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा मी टाइम। दिस इज जस्ट अ बज वर्ड, मी टाइम। है क्या मी टाइम? मी टाइम इज बेसिकली स्पेंडिंग दैट टाइम विद यू एंड हीलिंग योर सेल्फ। कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी एक्स्ट्रा है, उसको आप करें तो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और फोकस कर पाएंगे। एंड थर्ड, ट्राई एंड स्टडी इन द मॉर्निंग।
1: हाँ, ये आपने पहले भी कहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं।
2: नहीं, बच्चे थके हुए मन से पढ़ रहे हैं।
1: हाँ, सुबह सुबह आपकी एनर्जी भी हाई होती है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बहुत खूबसूरत समय होता है।
2: थका हुआ मन कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा? थका हुआ मन मना, आप सुबह उठे, समझो आप लेट उठे, फिर 6-8 घंटे तो आजकल बच्चे क्या करेंगे, ये देख लिया, फ्रेंड्स के साथ चले गए, स्कूल कॉलेज में चले गए, अब रात को 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं।
1: मन थका हुआ है।
2: मन थका हुआ है। थका हुआ मन फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है।
1: सही कह रही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ఫ్యాక్టరీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
1: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్. कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आर के ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: आजकल के जनरेशन के पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है?
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: और मुझे एक चीज बताइए कि हर घर की कहानी है कि जो माँ बाप होते हैं उनके भी माँ बाप रहे हैं, तो हमेशा ये कहने को या सुनने को जरूर मिलता है कि यार हम तो अपने माँ बाप से ऐसे बात नहीं करते थे, तुम क्यों नहीं सुनते हो हमारी बात। और ये जो आज की जो जनरेशन है जो माँ बाप के हैं, वो कहते हैं कि यार वी आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने अपने माँ बाप की भी बात सुनी और अपने बच्चों की भी बात सुन रहे हैं। तो ऐसे केस में ऐसे माँ बाप को आपकी क्या सलाह है?
5: See, I don't know, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो पहले के जनरेशन जो कई बार कहती है कि हमने तो अपने माँ बाप की सुनी है, कई बार पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लेकिन जो उनके अंदर का प्यार था वो बच्चों को पहुंचता ही था, इसीलिए वो करते थे। दो चीजें होती हैं, एक है बाहर के बोलने का तरीका और एक होता है दूसरा अंदर आपके क्या इंटेंशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं।
4: बिल्कुल।
5: तब वो एक कल्चर में था, डिसिप्लिन भी था, गुरुकुल जैसा सिस्टम भी था, अंदर में बहुत था कि पेरेंट्स ने कहा तो हमें करना है
4: जी।
5: हम उसमें बहुत क्वेश्चन नहीं करते थे, डिबेट नहीं करते थे, और हमें प्रेशर्ड भी नहीं फील होता था उस एज में, हमें कंट्रोल्ड भी नहीं फील होता था, हमें लगता था हम अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और आज्ञा के पालन करने से हमें दुआएं मिलती हैं
4: जी।
5: और कहते थे कि ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज नॉट दैट दे वर सफोकेटिंग, दे वर फीलिंग सफोकेटेड। नाउ अब ऐसा एक समय आ गया है कि जहाँ पर रिश्ते में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मना कई बार टाइम नहीं है, लव नहीं है, उतना नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि मेरा बच्चा ना मेरे अनुसार होना चाहिए। सी, एक बच्चा, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स टू बी लव्ड। डू यू अग्री दिस?
4: आई एग्री।
5: अब वो लव क्या है? एक वाइब्रेशन है। नाउ आई एम नॉट सेइंग, इसको गलत तरीके से नहीं ले, लेकिन फिर भी कभी कभी जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं या उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, या कई बार आपके अपब्रिंगिंग जो है वो नानी के थ्रू हो रही है, मेड के थ्रू हो रही है, उतना प्यार नहीं कर सकते। वो ड्यूटी से करेंगे,
4: बिल्कुल
5: वो करेंगे, हर चीज
4: करेंगे, रिप्लेस नहीं कर सकते,
5: वो ट्रेंड है, वो परफेक्टली करेंगे, लेकिन शायद वो उस चीज को रिप्लेस तो नहीं कर सकते ना। एक मदर का जो एक अनकंडीशनल, एक निस्वार्थ प्यार है, कभी कभी जब वो नहीं मिलता है तो वो बॉन्ड नहीं बनता है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: catching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है। हेलो विशाल एंड सिस्टर श्रेया, मैं अभिषेक माध्यमिक शिक्षक हूँ। पिछले 3-4 महीनों से जब सुबह उठ रहा हूँ, एक आलस सा मन में बना रहता है, जिससे मैं ना तो मॉर्निंग वॉक पर जा पा रहा हूँ और ना अपना काम कर पा रहा हूँ। डेली कोशिश कर रहा हूँ इस उपद्रव से लड़ने का, लेकिन ये आलस मुझे इस उहापो में थका दे रहा है। ब्रह्म कुमारी श्री श्रेया जी से मेरा अनुरोध है कि इस अंतर द्वंद से मैं कैसे मुक्ति पाऊँ।
3: सुबह उठने के जब बात आती है तो कई बार मुझे ऐसा आजकल महसूस होता है कि हम सोते बहुत लेट हैं और सुबह जल्दी उठना चाहते हैं।
2: हाँ, ये बात भी है, और उस पे हम सोचते नहीं कि हम जल्दी क्यों नहीं उठ पा रहे हैं।
3: मना कई बार हमें जल्दी उठने के जगह जल्दी सोने की मेहनत करनी चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा है कि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप उठ ही जाएंगे। किसी के लिए 6 घंटा, किसी के लिए 7 घंटा मैक्सिमम होता है। तो एक चीज ये है कि ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि हम 12-1 बजे सोएं और फिर 6 बजे उठ जाएं। दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, तो जल्दी सोने की कोशिश करें। सेकेंडली ये हो सकता है कि कभी कभी हमारा जब उठने का मन नहीं करता है, तो वो ये भी हो सकता है कि हमारे जीवन में जब कोई चैलेंज चल रहा होता है, कोई स्ट्रगल चल रहा होता है, सो वी डोंट वांट टू फेस इट, तो वो नींद प्यारी लगती है, वो सोए रहना प्यारा लगता है। पर उसमें अपने मन को समझाना कि जीवन उतार चढ़ाव है, ये जो चैलेंज है। वैसे भी आप देखें, हमेशा जब कोई चैलेंज होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, लगता तूफान है, होता तोहफा है।
2: अरे वाह, क्या बात है।
3: लगता तो तूफान है, लेकिन वही चीज हमारे अंदर की रेजिलियंस है, सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस है, वही चीज तो बढ़ाता है। सो जो भी चीज है उसको फेस करें, उससे भागे नहीं, उससे किनारा नहीं करें। नींद वो चीज है जो किनारा करना, मतलब इसलिए डिप्रेस्ड भी व्यक्ति क्यों होता है, डिप्रेशन वाले व्यक्ति को से भी सुबह नहीं उठा जाता। लेजीनेस कई बार, देखो ये समझना ही पड़ेगा, सिचुएशनल होता है। आप देर से सो रहे हैं इसलिए हैं, आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं इसलिए हैं, आप डिप्रेस तो नहीं है। डिप्रेशन का भी एक लक्षण क्या है, वो लगता लेजीनेस है पर होता डिप्रेस्ड है। यू जस्ट डोंट वांट टू गेट अप, यू जस्ट डोंट वांट टू फेस द लाइफ। तो जो भी है उसको फेस करें और आगे बढ़े, उसमें कुछ ना कुछ कल्याण ही है।
2: क्या बात है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो माय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, जहाँ पर चाय गरम, कॉफी ओवर कॉन्फिडेंट और ट्रैफिक जो है काफी प्रेडिक्टेबल हो चुका है. लेकिन यू मेड द राइट चॉइस. वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त. बातें करने वाले हैं हम म्यूजिक, मिर्ची एंड मस्ती के बारे में. ढेर सारी गॉसिप, गपशप और अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है अगले कुछ घंटों में और तुम्हारी लाइफ होने वाली है सुपर मिर्चीदार, सुपर ऑसम. और आज का लाइफ का मंत्रा है नेटफ्लिक्स की तरह, लोगों से पूछो मत आर यू स्टिल वॉचिंग, बस अपने आप को अपग्रेड करते रहो. क्योंकि हम देसीज जो है ना, उनकी लाइफ का अनऑफिशियल चैलेंज ही होता है इमोशनल बैगेज को कैरी करना. और इसी बात पर फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी फिलहाल कहीं जाने का नहीं, चिपक के बैठने का यहीं पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello,
1: Mr. Gotham. Sir, I actually asked sir, I was requesting to hear. I was asked to hear you singing, singing, singing. Sir, so sir, singing is a little song. I am singing songs. Sir, they are a little different.
2: How can I
1: say this? Until you hear me. First, in the mall, I saw a snake. तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भैया आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
2: सर कुछ गा के सुनाइए
1: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है
2: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
1: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
2: कौन से गाने
1: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए एक पेशकश कर रहा हूँ तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा
2: सुन ले बात मेरी
1: बात
2: सुन पहले बात
1: हाँ सर
2: और इसे बंद करिए बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
1: है सर बोलिए
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते समझ गया ना तू बात एक
1: जी सर
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका

0: Beat ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
8: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
8: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Mirchi, fresh maal.
13: Retro magic or dance floor energy ke saath. Suno chunari chunari, let's go.
14: Achha.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइस, मिर्ची मॉर्निंग्स पर दिस इज प्रिसिला विद यू। आज है 3rd of June और हिस्ट्री में आज के दिन क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले 1915 में रविंद्रनाथ ठाकुर गॉट अ नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटिश एंड प्लॉट ट्विस्ट ये था कि अ फ्यू इयर्स लेटर ही गेव इट बैक आफ्टर द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। 1947 में अ ह्यूज डे फॉर द सबकॉन्टिनेंट, द माउंट बैटन प्लान वॉज अनाउंस्ड, द रोड मैप दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। कट टू 1965, अमेरिका लुक्ड अप and said, what if, but outside. Astronaut Ed White became the first American to walk in space. And 1972 mein India commissioned INS Nilgiri, a proud moment for Indian naval history. And then history got heavier. 1989 mein protests in Beijing's Tiananmen Square ended in a military crackdown. 1998 mein Germany saw one of the deadliest high-speed rail disasters in history. Agar tumhare paas kuch aise history ke nuggets hai to fatafat se share karo mujhse. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp kar sakte ho 9033 Mirchi par. That's 9033 647244. Right now stay tuned and stay hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
6: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
5: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
7: अभी न जाओ छोड़ कर।
6: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Priscilla, it's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Welcome to Mirchi Mornings का weather update. Right now the temperature is sitting at 58 degrees Fahrenheit, but because of the wind it's feeling closer to 55 degrees Fahrenheit. यानी कि weather के कवि कहना चाहते हैं, hoodie weather तो चल रहा है लेकिन इतना dramatic नहीं कि तुम winter hoodie निकाल लो. Good news ये है कि zero rain is expected in next 24 hours, exactly as it was expected in the last 24 hours. और बारिश हुई नहीं. Mornings stay clear and tonight also stays clear. Yani ki umbrella ko aaj ghar par chutti manane ke liye choda ja sakta hai. Aaj ka range dekh lete hai. From a fresh 55 degrees Fahrenheit all the way up to 83 degrees Fahrenheit we are going to fluctuate and it'll feel like 51 to 86 degrees Fahrenheit depending on the wind and sunshine. Also today is a bit warmer than yesterday. Kal tha 78 degrees maximum temperature and today we are upgrading to 83 degrees Fahrenheit. Yani ki summer officially hame namaste keh रही है. वैसे बाहर निकलते टाइम लेयर के प्लेयर बनो एज आई ऑलवेज से एंड साथ साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड मिर्चीदार तरीके से एसपीएफ 50 प्लस प्लस प्लस लगाकर जाना बिल्कुल मत भूलना. एंड अभी मिर्ची लगाए रखो अपने साथ में. मैं हूँ प्रिसिला, मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो.
3: हाय शिवानी.
2: हाय.
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड. चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. हाँ? अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात से
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Ezelin.
16: Listener mein back to back gana sunega.
17: Back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats and unstoppable groove ke saath suno Mashuka.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: Hey there, my Mirchi family. This is Prisila with you. Sun rahe the Mirchi Mornings. And the trailer for Bharat Bhagya Vidhata just dropped with the line, "The headlines remembered the terror, history forgot the heroes." And online, reactions came in fast. A lot of viewers are calling the trailer powerful and saying this one feels built for the big screen. You know, popcorn in one hand, unnecessary film analysis in the other. And the one thing fans seem to agree on, plenty of comments are praising Kangana Ranaut's screen presence, with many saying she owns every frame. Now, whether you are team first day first show, team wait for reviews, or team I'll watch after somebody shares login details, one thing Bollywood never misses is giving us conversation material. Also, random desi expat ka thought hai, no matter which country we live in. Trailer release hone par suddenly hum sab ban jate hai cinematographers, screenwriters, डायरेक्टर, एक्टर एंड व्हाट नॉट। लेकिन बात तो सही है, हम देसीज जो है ना वो जोहरी होते हैं, हीरा ढूंढकर आखिर निकाल ही लेते हैं। क्विक लव टू आर के ज्वेल्स, जो कहते हैं कि उनके पास है रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस, एंड वहां पर सच में ये हो रहा है, जीरो लेबर चार्जेस है, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस है, गोल्ड और डायमंड की प्योर वैल्यू तुम्हें मिल रही है। तो वहां जाओ, अपनी गोल्ड एंड डायमंड की शॉपिंग करो। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, और अभी मिर्ची पर बने रहो मिर्चीदार बैंगर्स के लिए। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my birthday squad. I am Priscilla. Tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. And if you're celebrating today, first of all, happy birthday to you. Happy birthday to you. Aaj meri taraf se extra chai aur cake allowed hai tumko. All right? और आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं करती है. नाउ द फन पार्ट, लेट्स सी हु यू आर शेयरिंग योर बर्थडे विद. सबसे पहले वी गॉट टेनिस लेजेंड राफेल नडाल, एंड देन वी हैव एंडरसन कूपर, एंड ऑल्सो देयर इज जिल बाइडन, पेनेलोपी विल्टन एंड जेम्स प्योरफॉय. एंड फॉर म्यूजिक लवर्स, आज है बर्थडे द लेजेंडरी कर्टिस मेफील्ड का. तो आज के दिन अगर तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे तो ओवर थिंकिंग बंद करो एंड अभी अपने बर्थडे पर अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हुए मुझे भी फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची, दैट्स माई नंबर 9033647244. राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
5: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
6: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.

0: SFG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्डन सिल्वर का रेट अपडेट.
2: Ajwal's wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500, $4,500 पर ट्रेड उसके साथ. आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है. गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स 1 ounce 100 grams किलो बार्स पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से, जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड के प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Escaba la puscabana, sacabana.
1: Gambana.
0: Murga, murga. La virpa la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao, yaar. Hello.
2: Hello.
3: Hello. Aap hold karna ek second, bhai saab. Isko wahan se mat uthao, yaar. Aise nahi uthega, yaar. Toot jayega, sara saman toot jayega wahan se. Mat karo usko wahan se. Hello. हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन?
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
2: कहाँ भिजवाना
3: है? मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है? जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा है?
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
15: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
14: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
16: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. Ab ye taala main teri jeb se chaabi nikal kar hi kholunga.
14: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनेंगे हम कि सितारे क्या कहते हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज ब्रेन ब्राउजर में 47 टैब्स खुले हुए हैं। डोंट प्रेशर योरसेल्फ विद इम्पॉसिबल गोल्स। इजी डे, सॉफ्ट लॉन्च एनर्जी। लकी कलर इज टैंजरीन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी वृषभ राशि, समथिंग शाइनी मे लुक एक्साइटिंग बट रीड द फाइन प्रिंट। देसी रूल अप्लाइज, ट्रस्ट बट वेरीफाई एंड देन आस्क दैट वन आंटी इन योर फैमिली ऑल्सो। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, फ्रेंडली फेसेस आर नाइस बट डोंट कंफ्यूज Use vibes and facts today. If something feels rushed, pause. Lucky color is electric blue. Lucky number is 31. Cancer, yani Karak Rashi, things seem smooth, but work emails can surprise faster than relatives asking, beta, shaadi kab? Stay alert. Lucky color is coral pink. Lucky number is 8. Leo, yani ki Sinha Rashi, before launching a giant life plan today, ask, does this need to happen now? Delayed drama is sometimes premium piece. Lucky color is bronze. Lucky number is 17. And last but not the least, Virgo yani Kanya Rashi. Recover, reset and continue. You're not behind, you're just buffering. Lucky color is mint green. Lucky number is 42. And there you have your Rashi Zone number 1. Baki bachi 6 rashiyon ko lekar bas itto se time mein wapas aati hu main. Tab tak tum suno Mirchi Dar Bangers only on Mirchi Mornings. Aur mujhe follow karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot. It's the

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Listener mein back to back gana sunega.
5: Back to back gana sunega.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: आज ना मेरे दिमाग में ये वाला गाना चल रहा है, सोने की साइकिल चांदी की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। मुझे नहीं पता आपको ये गाने के बारे में पता है कि नहीं पता है, लेकिन यार मैं बचपन से बड़ी फिल्मी रही हूँ और मैंने सारे फिल्मी गाने जो हैं वो रटे हुए भी हैं और देखे हुए भी हैं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And now you tune in with me on Mirchi. And actually, ये गाना सुबह तब से शुरू हुआ जब से मुझे पता लगा कि आज World Bicycle Day है. और आज हम जब उस एरा में रहते हैं जहां हर दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये दिन तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के साथ मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने साइकिल चलानी सीखी थी। और देखो बॉस, साइकिल चलाना आ जाना वाज एक्साइटिंग, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग वाज साइकिल चलाना सीखना। वो कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत सफर होता है, तो बात यह भी कुछ ऐसी ही है। और साइकिल चलाना सीख लेने के बाद की यादें हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन मात नहीं है कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ। लेकिन जिस दिन साइकिल चलाना सीखा ना, वो दिन हम सभी को अपने अपनी जिंदगियों में याद है ना। आई थिंक मेरी लाइफ की शायद वो पहली फीलिंग थी जब मुझे लगा था कि मैं खुद से भी कुछ कर सकती हूँ। वाओ, आज से पहले मैंने कभी इस दिन की खासियत को इतनी गहराई से समझा ही नहीं था यार। आपके साथ बातें करते करते ना बाकी कितनी सारी बातें निकल जाती है। तो चलो किस्सों की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं और मिडडे मोहब्बत पर 90s का गियर लगाते हैं। एंड द सॉन्ग कमिंग अप इज डेडिकेटेड टू माय पहली साइकिल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: se permite.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Milchi, murga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रहा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसा कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर। वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
4: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात,
4: मेरी बात
3: सुन, पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है। सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Lead ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, Pajak.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
5: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
7: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
11: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
10: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
12: अभी न जाओ छोड़ कर।
11: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
13: अब मिर्ची खा।
1: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर पहली साइकिल,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज तुम्हारा जिक्र छिड़ा तो याद आया कि तुम्हें हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेले थे यार। तुम शायद मेरा पहला बड़ा ख्वाब थी, और तुम्हें पाने की आस जब थी ना, तो लगता था कि बस तुम मिल जाओ तो लाइफ बन जाए। क्या पता था कि इस फीलिंग का ये सिलसिला आज तक चलता ही जाएगा। नेवरदलेस, तुम्हें पाने की एक ही शर्त थी, जो हर बच्चे के माँ बाप रखते हैं शायद, कि एग्जाम्स में ढंग के नंबरों से पास हो जाओ तो मिलेगी साइकिल। और बस यही मेरा उस साल का मकसद था। मुझे क्लियरली याद नहीं कि मेरे मार्क्स कैसे आए थे, कितने आए थे, लेकिन ये जरूर याद है कि तुम जरूर घर आई थी। सिल्वर और ब्लू कलर की बॉडी विद अ बैक रेस्ट, मुझे तुम्हारा लुक आज तक याद है। और वो पहली बार जब मैं तुम्हें स्टेशन रोड पर बनी साइकिल्स की शॉप से घर तक चला कर लाई थी ना, वो मेरी लाइफ की पहली लॉन्ग ड्राइव थी। ऑफ कोर्स तुम्हारे घर आने के बाद मैं तुम्हें पूरे दिन तो नहीं चलाती थी, लेकिन तुम्हारी मेरे लाइफ में आने की खुशी मेरे दिल को दिन भर गार्डन गार्डन रखती थी। तुम्हें पता है, जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी ना, तब भी मैं इतनी खुश नहीं थी जितना कि तुम्हें लाने वाले दिन खुश थी। शायद EMI और पेट्रोल का खर्च सताने के लिए नहीं था ना, इसीलिए। तुम्हारे बारे में जितना बोलूं ना, कम ही है यार। तुम मेरे बचपन का एक बहुत अहम हिस्सा थी, मेरी इंडिपेंडेंस की फीलिंग, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का पहला लेसन तुम थी मेरी पहली साइकिल। पेडलिंग थ्रू योर मेमोरीज, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
0: It's 11:30 AM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिली।
5: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
6: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: '90s में साइकिल्स और बॉलीवुड फिल्मों का ना बड़ा गहरा रिश्ता था।
9: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
10: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
8: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है, एंड दिस मेक्स मी रियलाइज कि 90s के बॉलीवुड का, इनफैक्ट उससे पहले के बॉलीवुड का भी और साइकिल का नाता ना बड़ा गहरा रहा है। जाने कितनी बॉलीवुड फिल्म्स हैं या गाने हैं जहां साइकिल्स हैव बीन यूज्ड एज अ प्रॉप। जो जीता वही सिकंदर में तो साइकिलिंग प्लेज अ ह्यूज रोल। रिमेम्बर हाउ आमिर खान के फादर उनके बड़े भाई को एक हाई एंड साइकिल दिलाने के लिए कैसे पैसे जमा कर रहे थे, और उसी साइकिल पर रेस करके इन द एंड आमिर बिकम्स द सिकंदर। इनफैक्ट दिस वॉज द मूवी जिसमें हमें ये पता लगा था कि अच्छा, साइकिल्स में भी गियर होते हैं। तब से आई वॉन्टेड टू राइड अ गियर वाली साइकिल, जो ख्वाब मेरा कोविड के टाइम पर पूरा हुआ। सोचो फिल्म में हमारी लाइफ का कितना अहम हिस्सा है ना, इनमें से न जाने कितने सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं फॉर आवर बकेट लिस्ट, है कि नहीं? चलो जी, इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: If blue used to be for boys and pink used to be for girls, वैसे ही Synthol used to be for boys and Lyril used to be for girls.
0: Mirchi pe TV Darshan.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And usually, Synthol के ads were done by male models only. लेकिन आपको Synthol का वो ad याद है, जिसमें शाहरुख खान और गौरी साथ दिखाई दिए थे. Well, yes, ये couple was way ahead of their times. आजकल तो काफी couples अपनी market value बना रहे हैं, लेकिन back in the 90s, शाहरुख खान और गौरी ने इस idea की शुरुआत कर दी थी with a Synthol ad. Hey, but what was this gender projection जो ads के जरिए एक mindset बन गया था कि certain soaps are for men and certain for women. Like I remember, मैंने आज तक कभी अपनी life में life boy use नहीं किया है, जबकि my father always used to use it. क्योंकि ad तो क्या, इस साबन के तो नाम में भी boy था, तो of course not for a woman. चलो इसी बात पर शाहरुख खान का एक गाना हो जाए. And this song on behalf of शाहरुख खान is dedicated to all the girls जिनकी आंखों का रंग कत्थई है. Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
10: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
11: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
12: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने आज वर्ल्ड साइकिल डे पर साइकिल से रिलेटेड कई सारी बातें करी हैं और अब मैं आपको उस एक्टर के बारे में बताती हूँ जो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन के लिए कार में नहीं साइकिल पर पहुंचे थे।
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ तो नहीं, क्योंकि सलमान खान तो शौकिया तौर पर साइकिल चलाते हैं, लेकिन जिन एक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो मजबूरी में साइकिल चलाकर अवार्ड रिसीव करने के लिए गए थे। और ये है आशुतोष राणा, जिन्हें अपना पहला फिल्म फेयर मिलने वाला था फॉर द मूवी दुश्मन, लेकिन वो तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल किया करते थे। एंड फॉर द अवार्ड फंक्शन ही चोज टू राइड अ बाइसिकल। एंड इन एन इंटरव्यू ही रिवील कि एट दैट टाइम ही एंड हिज नाउ वाइफ रेणुका शाहने वर डेटिंग ईच अदर, और रेणुका ने उन्हें एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करके सरप्राइज दिया था। एंड आफ्टर दैट आशुतोष ने रेणुका को एक कार गिफ्ट करी। इसे कहते हैं कपल गोल्स। तो चलो इसी बात पर आशुतोष की फिल्म संघर्ष से हो जाए अगला गाना। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: It's 12 p.m. मिर्ची टाइम चेक,
5: ब्रॉट टू यू बाय आरके जूल्स। आरके जूल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: It's 12:30 p.m. मिर्ची टाइम चेक,
5: ब्रॉट टू यू बाय आरके जूल्स। आरके जूल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Cassette ke side B ka teesra gana.
2: Mirchi 90s cassette.
1: कोयला मूवी में जो म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। इस म्यूजिक में ना एक कसक है जो लिटरली दिल के तार छू जाती है, एंड आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, क्योंकि जितना मैं कोयला के म्यूजिक को फील करती हूँ ना, उतने मेरे पास शायद अल्फाज नहीं होंगे टू एक्सप्लेन इट। बट दिस सॉन्ग

वैसे तो इस गाने की सिचुएशन इन द फिल्म इज डिफरेंट, लेकिन आज की अगर बात करें ना तो आई फील कि दिस सॉन्ग इज फॉर दोज टू पीपल जो एक बड़े से शहर में जाकर अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोग अक्सर इतनी भीड़ में खुद को तन्हा ही पाते हैं, और जब दो तन्हा दिल मिलते हैं तो वो दोनों के अकेलेपन को समझते हैं और वहीं कनेक्ट बैठ जाता है, क्योंकि यही है वो तन्हाई जो दोनों को पास ले आई। और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरा ख्याल करना है तो शो के बाद इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या ही हद सेंशियस गाना है ये भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे याद है गाना मैंने शायद टीवी पे ये फिल्म आ रही थी तब देखा सुना था, या चित्रहार में देखा सुना था। और ये जो अगला गाना हम सुन रहे हैं ना, ये भी कोई कम सेंशियस नहीं है, लेकिन ये मैंने पता है कब पहली बार सुना था, इसे मैंने एज ए रीमिक्स सुना था। इस रीमिक्स के वीडियो में थी आयशा टाकिया, शायद आपको याद आ जाए वो वीडियो जिसमें उन्होंने दो चोटियां बनाई हुई होती हैं और उस गाने में क्लब दिखाते हैं, लिफ्ट भी दिखाते हैं। अब तो याद आ ही गया। ओरिजिनली ये गाना जवानी दीवानी का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना, नाना।
1: ए, हे।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
4: हेलो
5: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
4: हाँ जी बोलो।
5: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
4: हाँ जी देते।
5: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
4: कहाँ भिजवाना है
5: मैं आपको बता दूँ? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
4: जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
5: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
4: किसको जी?
5: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
4: क्या गिर गया?
5: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
4: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
5: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
4: हाँ
5: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
4: उठवाना है।
5: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
6: हेलो
4: हेलो
6: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
4: कहाँ से बोल रहे?
6: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: Inefficient.
11: Very complex.
12: Clumsy or
13: confusion ही confusion.
8: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
15: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
15: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans with Charu, only on

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

1985 की फिल्म गुलामी जब बन रही थी तो उसके प्रोड्यूसर को कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली काफी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तब फिल्म के स्टार्स में से जो सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी फीस नहीं लूंगा इस फिल्म के लिए, वो थे बड़े दिल वाले काइंड हार्टेड धर्मेंद्र जी। और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को जब पता चला कि धर्मेंद्र जी ऐसा जेस्चर कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी फीस लेने से मना कर दिया। तो इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: हेमा मालिनी की उनकी खुद की फेवरेट फिल्म्स कौन सी रही हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: वैसे दुल्हन, किनारा, खुशबू, देन सीता गीता, इट्स अ डिफरेंट रोल, लाल पत्थर।
0: वैसे हेमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे एक्सपोज करने वाली फिल्में या सेंसुअस रोल्स वो नहीं करती थी, जिसकी वजह उनको ये सब कंफर्टेबल नहीं लगता था, और उनकी मम्मा भी ये सब अलाउ नहीं करती थी, जो उनके करियर के काफी डिसीजंस लेती थी। वैसे हेमा जी से एक बार ये भी पूछा गया था कि उनकी मम्मा जब हमेशा उनके साथ फिल्मों के सेट्स पर रहती थी तो उनके सामने क्या रोमांटिक सीन्स करने में वो अनकंफर्टेबल होती थी।
1: हमारे परिवार के कोई भी सदस्य इस किस्म के सीन करने के समय सामने बैठे हों कैमरा के सामने, तो आर्टिस्ट को तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ये माँ हो या भाई हो या कोई भी हमारे घर के सदस्य, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन टू डू योर रोमांटिक सीन विद अ मैन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स।
0: चलिए इसी बात पे गाना सुनते हैं, जिसका पिक्चराइजेशन शायद इतना सेंसुअस नहीं था, लेकिन ये गाना एक अलग ही तरह का सेंसुअस और रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

1983 की फिल्म सदमा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसका जो क्लासिक गाना है ए जिंदगी गले लगा ले, ये गाना सुरेश वाडकर जी की आवाज में है, गुलजार साहब ने लिखा है, इले राजा का कंपोज किया हुआ। और इले राजा जी जब इसे कंपोज कर रहे थे इस फिल्म में, तो उनके म्यूजिक ग्रुप में कीबोर्ड प्लेयर पता है कौन थे? A.R. रहमान। किसने सोचा था कि उस फिल्म के कंपोजर्स के ग्रुप में जो कीबोर्ड प्लेयर लड़का है वो और इस फिल्म के लिरिसिस्ट गुलजार साहब मिलके कुछ 25 साल बाद एक आइकॉनिक सॉन्ग बनाएंगे जिसे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। स्लमडॉग मिलियनेयर का जय हो भाई, ऐसी है जिंदगी, कभी लात मार देती है कभी गले लगा लेती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

नसीब फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अपेरेंटली अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की साथ में लास्ट फिल्म थी। ऐसा सुनने में आता था कि अमिताभ बच्चन साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सेट्स पे देर से आने की आदत से परेशान थे, और यहाँ अपने बच्चन साहब तो एकदम परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाले हैं। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो उनसे नहीं हो पा रहा था बिकॉज शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत लेट आते थे सेट्स पे, तो उन्होंने उनके साथ काम करना फिर बंद कर दिया। एक्चुअली आई थिंक ये 1981 की फिल्म है नसीब, उसके बाद इनकी कोई फिल्म आई भी नहीं साथ में। कोई पहले से बन रही हो, लेट रिलीज हुई हो, वो अलग बात है। आई थिंक पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: Hello,
3: Mr. Gautam.
2: कौन बोल रहे हैं
3: सर? मैं एक्चुअली आसर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर, आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा।
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कोंडा में कौन से गाने हैं
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात सुन पहले। और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर। बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: अमित के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
13: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

भाई लता मंगेशकर जी ने जब मैंने प्यार किया फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए थे तो कैसे किए थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप कहेंगे स्टूडियो में गा के माइक के सामने किए होंगे। ऑफ कोर्स वैसे किए थे, लेकिन उन्होंने ना उस फिल्म के सारे गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि फिर उनको अब्रॉड टूर पे जाना था, कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह पे। और आप सोचिए, ये फिल्म आई थी 1989 में और उस टाइम लता मंगेशकर जी 60 साल की थी। क्या उनका स्टैमिना, उनकी एनर्जी रही होगी। और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल भी किया अगले दिन ये सारी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद। ऐसे ही होते हैं फिर कर्मठ लोग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu, only.

0: देव आनंद साहब का असली नाम क्या था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और एक बार एक इंटरव्यू में इस पर खुद उन्होंने क्लैरिटी दी थी, सुनिए।
1: नाम है धर्मदेव, मैंने धर्म को उड़ा दिया क्योंकि मुझे लगा कि धर्म बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, देव रखा और देव के साथ आनंद जोड़ दिया, इसलिए आनंद मेरा सरनेम है और इसलिए मैं धर्मदेव आनंद से देव आनंद।
0: और अर्ली 40s जब वो लाहौर में ग्रेजुएशन करने के बाद बॉम्बे आ गए थे एक्टर बनने के लिए, उन दिनों को याद करते हुए सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मैं लाहौर गम कॉलेज में था, मैंने बीए ऑनर्स किए थे और मैं एमए जाना चाहता था। मेरे पिताजी की उस वक्त माली हालत ठीक नहीं थी तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट की टिकट पकड़ी और मैं किसी को बम्बई में नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था। मैं बॉम्बे सेंट्रल में उतरा, मैं 2 साल का स्ट्रगल किया और 2 साल के स्ट्रगल के बाद जब मुझे ब्रेक मिला हम एक हैं का वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान का आजादी का ना देखा, सारे फेजेस देखे हैं।
0: कई बार मुझे लगता है कुछ पुराने एक्टर्स में एक अलग तरह की संवेदनशीलता इसीलिए होती थी बिकॉज इन्होंने इतने बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

प्रोफेसर फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में शमी कपूर के ऑपोजिट थी एक्ट्रेस कल्पना। इनका पूरा नाम कल्पना मोहन था, एक्चुअली इनका रियल नेम अर्चना मोहन था और ये फ्रीडम फाइटर अवनी मोहन की डॉटर थी। अवनी मोहन एक पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड थे और कल्पना जी बहुत अच्छी कथक डांसर भी थी। और कई बार ऐसा होता था कि राष्ट्रपति भवन में जब बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था बाहर के देशों से भी, तो जब कोई ऐसा कथक परफॉर्मेंस होता था तो उनको इनवाइट भी किया जाता था। काफी फिल्मों में थी, प्यार किए जा फिल्म में थी एंड तीन देवियां फिल्म में वो जो गाना है अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, उस गाने में जो एक्ट्रेस हैं वो कल्पना जी ही तो हैं देवानंद साहब के साथ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। अरे

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। Lots of right answers. It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है. Before we move on and we play the song, Himesh Reshammiya is also exactly that artist जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए। इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग, मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ, आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है।

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइड वाले को भी बताओ @RJ करेगा, बट जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot
1: Mirchi
2: Iska bana uska bana sabka bana Ya bana Murga murga Nabeez wala murga Mirchi murga
3: हेलो
4: हाय शिवानी
3: हाय
4: हाय शिवानी कंग्रेचुलेशंस मुबारक हो गाड़ी खरीद ली
3: हाँ थैंक यू वेरी मच आप कौन बोल रहे हैं
4: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया अरे ग्रेट मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार
4: ग्रेट माइलेज मुझे बताओगे कितना है
3: ठीक ठाक है 13-14 के करीब पड़ जाता है आप कौन बोल रहे हैं
4: अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में
3: चला रही हूँ काफी दिन हो गए मेरे को पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई
4: ओके शिवानी आप मेरा थोड़ा सा मैं वही बता रहा हूँ शिवानी आप मुझे नहीं जानती हैं अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा
3: आपको लेनी है क्या
4: नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा डॉगी है ना इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो मैं उनसे बात कर रहा हूँ ज़ोबी शट अप मैं बात कर रहा हूँ उनसे अभी कर लेना शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए है इसका हुआ नहीं है नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है इसको करना है आप ले आएंगे वो टायर के पास
3: नहीं आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना खरीद नहीं सकता मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार इसका ये कब से रोके हुए वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी
3: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले
4: ये सिर्फ 3 अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी एक टायर पे करेगा
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी
3: हेलो
4: आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा अच्छा मेरी बात
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं खुद के कुत्तों जैसे ना आपने कुत्ते का इलाज
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज फोन मत काटना शिवानी मेरी बात सुनो बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मेरी बात सुन लो प्लीज अतुल ने मुझे नंबर दिया था ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारा मुर्गा बन गया है कंग्रेचुलेशन तुमने नई गाड़ी ली है यार ज़ोबी शराब वो गाड़ी ला रही है टायर पे कर लेना
3: कुकड़ू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू lionmtg.com अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है
8: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग ईकेजी एंड फ्लेबोटमी मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन Demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: तेरा क्या होगा कालिया
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
12: अब मिर्ची खा
0: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: गाना
0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
14: नंबर 7

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए. मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन नंबर 5, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

0: Sana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
3: In association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
8: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
10: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Listener MA, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
17: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna Ni Begane Baro Krishna Ni Begane.
0: Gaane ka naam hai Krishna by the one and only Colonial Cousins. This song is truly revolutionary. I don't think is gaane ko hum kisi bhi ek box ya era mein fit kar sakte hain. Ye gaana 1996 mein release hua tha, but if you think about it, it looks like aaj kisi studio se fresh produce hoke aaya hai. Colonial Cousins were definition of fusion. Ek taraf Hariharan ji, who is classically trained ghazal singer, and dusri taraf Leslie Lewis, who's all about English rock and roll and pop. Dono ne saath mein milke banaya Colonial Cousins, jinki sound आज भी रेवोल्यूशनरी है. 1996 में उनका डेब्यू एल्बम आया जिसका पार्ट है ये गाना कृष्णा. इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट. बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है. मैं तब छोटी थी. गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस. और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक as Krishna, as Jesus, as Allah, as anyone. And this is where this song becomes extra special. What I absolutely love about Colonial Cousins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Unhone radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Unhone radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi

0: वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय माई साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी है. It's an Anoop Jain song, उन्हीं की composition, a Coke Studio Bharat song. 18 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके this week on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. बद्दी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 3.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Rana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. This is the show where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaanon mein ek nayi entry ho chuki hai. Gaana number 10 se gaana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Now before we move on to the top 2 songs of the week, a quick recap right from the top. Gaana number 10 par tha Mika Singh Daya the rapper ka Chori. Chori karti jumper, chore ne de diya bumper. फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9. तेरे आगे पीछे लंके सुन दो ना छोरी का हर. गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने. अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7. लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले. दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6. जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना. उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5. दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3. कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में. गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन 3 पोजीशंस ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1. ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: herkes çok eganay sana. Şam şanda, let's do not
1: donkey, have a funky time. दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिडवीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिडवीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, usko vahan se mat uthao, yaar. Hello.
1: हेलो
2: आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
1: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
10: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્થળ પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા, અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ, અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂયોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ, આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 ઓર વિઝિટ 2849 વુડબ્રિજ એવન્યુ, એડિસન, ન્યૂ જર્સી।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सुरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: इट्स 4:30 PM, मिर्ची टाइम चेक, ब्रॉट यू बाय आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है फिल्म अग्निपथ के चिकनी चमेली गाने से। यार वैसे तो इस गाने में स्क्रीन पे कटरीना कैफ का रॉ, रस्टिक और हाई एनर्जी डांस तो है ही, लेकिन पर्दे के पीछे गणेश आचार्य जी जो कि इस गाने के कोरियोग्राफर है, उन्होंने बताया था कि कटरीना ने इस गाने के लिए लगातार 8 दिन रिहर्सल किए थे और कभी कभी 8 to 9 hours एट अ स्ट्रेच। तो सोचिए दोस्तों, ये कोई स्मूथ बॉलरूम नंबर नहीं था। फास्ट बीट्स, इंटेंस एक्सप्रेशन, देसी फुटवर्क और फुल स्टेमिना का टेस्ट था। और स्क्रीन पे कैटरीना एकदम फायर तो लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे बॉडी को लिटरली कमांड देना पड़ रहा था कि बस थोड़ा और, एक टेक और। और जी हाँ, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, करण जौहर, सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस देख के काफ़ी इंप्रेस हुए थे। और ना ही सिर्फ वो, पूरी ऑडियंस काफ़ी इंप्रेस हुई थी, क्योंकि कभी कभी ना बॉलीवुड में एक हिट हुक स्टेप के पीछे पूरा बूट कैंप छुपा होता है और यही गाना वो साबित करता है। वैसे ये वो गाना था जिसमें यार कैटरीना और ऋतिक थे, और पहली बार ऐसा था कि ऋतिक नहीं नाच रहे थे और कैटरीना नाच रही थी और हम सब कैटरीना को देख रहे थे। तो जी हाँ, ये थी पर्दे के पीछे की वो मजेदार दास्ता फॉर द सॉन्ग चिकनी चमेली, और वही सुनते हैं अभी। लेकिन आप भी मुझे बताना कि ऐसा कौन सा हिट गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको भी जाननी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar. मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और पंजाबी तड़का ढोल एनर्जी यानी नगाड़ा नगाड़ा। जी हाँ, एक ऐसा सेलिब्रेशन एंथम है फ्रॉम द वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। मतलब यार, ये एक ऐसा एल्बम है ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और शाहिद ने जब इस गाने की शूटिंग की थी ना, तो उस टाइम पे ना उन्होंने अपने शूज के अंदर एक कॉटन रखवाई थी, क्योंकि स्टेप्स इतने ज़्यादा विगरस थे और इस गाने की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते थे कि बस उनको लगता था कि अब एक कॉटन रख दो ना तो एकदम राहत मिल जाती थी, क्योंकि गाने का बाउंस, गाने का ठहराव और गाने का फनी कुछ ऐसा था। वैसे यार, ये गाना जो सोनू निगम की आवाज़ में गाया गया है इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ जब वी मेट, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि आपका जब वी मेट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। लेकिन इस शाम की शुरुआत करते हैं विद नगाड़ा नगाड़ा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। कुछ गाने शादी में बज जाते हैं और फिर डांस फ्लोर की हिस्ट्री बन जाते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट, जब वी मेट के एल्बम के बारे में बात हो रही है। और इसका गाना मौजा यार कभी भी सुन लो, मौज ही लेकर आता है। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है ना जहाँ मीका सिंह की वॉइस ने लिटरली पार्टी को इग्नाइट कर दिया था। और एक बहुत ही मस्त बात है इस गाने की, मतलब इसका जो हुक स्टेप है उसको कोरियोग्राफर ने ऑन द स्पॉट क्रिएट किया था। क्योंकि यार शाहिद कपूर और हमारे जो करीना कपूर खान है वो इतने ज़्यादा हाइपर फन मोड में थे कि यार उनको देख के उन्होंने जो ओरिजिनल कोरियोग्राफी थी वो कैंसिल करके नई कोरियोग्राफी ऑन द स्पॉट बनाई। और उनके कैरेक्टर्स को मैच करने जैसी जो उनकी एनर्जी थी, उस एनर्जी को मैच करने जैसी उन्होंने कोरियोग्राफी बनाई थी। और तभी तो यार ये गाना 2007 से लेकर आज तक हर ढोलकी, हर संगीत, हर आफ्टर पार्टी का VIP मेंबर बन चुका है। जैसे कि आपने मज्जा ही मज्जा पे कभी डांस किया, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं मज्जा ही मज्जा फ्रॉम वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है और जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल सुनते हैं जब वी मेट का मौजा ही मौजा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La
1: vieja la murga. Mirchi, murga. Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आपसे ना वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो.
2: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
1: कोंडा में कौन से गाने?
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. ताने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
1: सुन ले बात सुन पहले बात सुन. और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है. सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर.
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी बात फिट होने की होती है या जिम जाने की होती है तो हम सिर्फ बाइसेप्स बढ़ाने के लिए नहीं जाते, हमें चाहिए होती है कोर स्ट्रेंथ। और वैसे ही लाइफ में ना सिर्फ सैलरी ही काफी नहीं है, हमें चाहिए होती है फाइनेंशियल फिटनेस। और जब फाइनेंशियल फिटनेस स्ट्रांग होती है ना, तभी होम बाइंग सिर्फ एक सपना नहीं रहता, एक प्लान्ड स्मार्ट मूव बन जाता है। और इसी स्मार्ट प्लानिंग के बारे में आज और भी जानकारी हमें देंगे मेरे दोस्त Beesh from Lion Mortgage. Over to you, Beesh.
1: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
7: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
6: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
8: अभी न जाओ छोड़ कर।
7: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
10: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा। सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर, आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा। हम अमेरिका में ताजा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं। हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं। आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 732-986-6241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बात हो रही है ऐसे एल्बम की जो 2007 में रिलीज हुई थी, जब वी मेट, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और फिलहाल बात हो रही है एक ऐसे गाने की जो आपको सीधा मनाली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, श्रेया घोषाल की आवाज में ये इश्क हाय, ये सुनते ही लगता है कि मनाली की सारे रोड्स सडनली म्यूजिकल हो चुके हैं। कि श्रेया घोषाल की प्लेफुल वॉइस के साथ शूटिंग के सेट्स पर भी एक्चुअल ढोलक वाले लोकल्स ज्वाइन हो गए थे, और इसीलिए इस गाने में एक रॉ पहाड़ी एनर्जी है। वैसे यार करीना को तो वन टेक गीत कहा जाता ही है, लेकिन इस सॉन्ग को सुनने के बाद ना हर एक इंसान के दिल में, हर एक लड़की के दिल में गीत डांस जरूर करती है। वैसे क्या आपको भी ये गाना पसंद है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्योंकि यार इतने सारे हिट एल्बम्स है, और ये जो हिट एल्बम है जब वी मेट, उसके इतने सारे खूबसूरत गाने हैं। तो ऐसा भी कोई गाना है जो आप यहाँ पर प्ले करवाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताना। और फिलहाल बजाते हैं ये इश्क हाय राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए, मॉर्निंग कम्यूट की जगह एक काम, कप ऑफ चाय, और एक ऐसा काम वो भी ऐसे फील्ड में जहां ग्रोथ भी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और आजकल लोग करियर चूज करते वक्त ना सिर्फ सैलरी ही नहीं देखते, वर्क लाइफ बैलेंस भी देख रहे हैं। और कई सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे करियर ऑप्शंस पॉसिबल है, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो आज ही कंसिडर कीजिए अ करियर एज अ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट विथ एम्स एजुकेशन, बिकॉज विथ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन दिस एवर ग्रोइंग फील्ड। प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन अवेलेबल है और अभी वो लोग आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। फॉर मोर गाइडेंस कॉल 9082220002, 9082220002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग करियर ऑफ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट, जहां घर का सुकून भी है और काम करने का मजा भी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है जब वी मेट के उस ऐतिहासिक एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, लेकिन इस गाने की एक मेलोडी ऐसी है जो शब्दों के बिना भी ना एक कहानी सुना देती है। जी हाँ, बात हो रही है जब वी मेट के आओगे जब तुम गाने की। इतना ब्यूटिफुल सा गाना है ये, और ये गाना ना सिर्फ एक गाना नहीं लगता बल्कि एक दुआ जैसा लगता है। उस्ताद राशिद खान की क्लासिकल डेप्थ ने इस ट्रैक को प्योर सिनेमा का हार्टबीट बना दिया। वैसे शूटिंग के दौरान जब करीना बारिश में खड़ी थी तब क्रू बोलती थी कि यार एक मोमेंट ऐसा आया था जहां बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ हो गया था, पर तब हवा की आवाज मेलोडी बन गई थी और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक का फील दे रही थी, और उसी के दौरान उन्होंने शूटिंग की थी। तभी तो यार लोग कहते हैं कि ये गाना किसी के वापस आने का सबसे खूबसूरत तरीका है, किसी को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो चलिए, अगर आपके भी अंगना में फूल खिलते हैं जब कोई खास आपके अंगना में आता है, तो आपके लिए ये अगला गाना आओगे जब तुम साजना फ्रॉम जब वी मेट। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो जब वी मेट का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और आपके लिए जब वी मेट का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacabana. La bala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हाय शिवानी.
3: हाय
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कप से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
3: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता.
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी.
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना. शिवानी मेरी बात सुनो.
3: नहीं
4: नहीं, बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
6: इट्स पगला.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskura kar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
14: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
15: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
14: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
16: अभी न जाओ छोड़ कर.
15: 28 जून 3 PM एट ITV गोल्ड ऑडिटोरियम, ओक ट्री रोड. कॉल सतीश राइट नाउ एट 862-812-9111.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
20: एक ही होता है.
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। देखिए जून का महीना तो शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट आधा साल खत्म हो चुका है। वैसे कुछ लोग ना इस जो टाइम है स्पेशली जून या जुलाई का जो टाइम होता है उसको ना एक सेकेंड इनिंग्स मानते हैं साल का, कि यार चलो ठीक है जो रेजोल्यूशन साल की शुरुआत में किए थे वो नहीं टिक पाए तो वाई नॉट हैव अ रीवैम्प ऑफ दीज। तो ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी रेजोल्यूशन बहुत सारे लोगों ने किए थे और साल किस तरह से ऊपर नीचे रहा ये तो सबने देख ही लिया। लेकिन हमारे गोल्डन आर में, यहां पर जहां पे होती है गोल्ड की बातें, हमारे गोल्ड डिकोडर सीरीज में थोड़ी चमक थोड़ी समझ विद आर गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स, तो उन्हीं से पूछते हैं कि यार बहुत सारे लोगों ने साल के स्टार्टिंग में कुछ रेजोल्यूशंस किए थे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, स्पेसिफिकली गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, वो तो काफी उथल पुथल हुए हैं, लेकिन अभी नया जो हाफ ईयर जो बचा हुआ है उसमें किस तरह से अपने गोल्ड परचेजेस को स्ट्रेटेजाइज किया जा सकता है, तो चलिए स्वागत करते हैं बॉबी जी का। नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आपका आज के इस खास शो में।
6: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिंधी जी एंड योर फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड हैप्पी इवनिंग टू एवरीवन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो आपका सेकंड हाफ है आफ्टर द ब्रेक वाली सीरीज में फोर गोल्ड $4,430 पर ट्राई अउंस, अबाउट $100 पर ट्राई अउंस पिछले वीकेंड से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड कर रही है। सो अच्छी बात यह है कि जो सोच रहे थे कि शायद मौका चूक गया है, अभी भी गाड़ी स्टेशन पे है। You can invest in gold at $4,430 per troy ounce. और सिद्धि जी जैसा हम बोलते आए हैं कि हर डिप के साथ एक एंट्री पॉइंट बनता है, हर डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ एक एंट्री पॉइंट बनता है, तो हमें लगता है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो $4,430 एक एंट्री पॉइंट के लिए। गोल्ड में करेक्शन है पिछले एक वीक से एंड आई थिंक जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से गोल्ड अभी हेड ऊपर नहीं कर रहा है और इससे पहले ऊपर जाए, जो आपका सेकेंड सवाल है कि आप उसे कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। देखिए बहुत सारे लोग बॉन्ड्स लेते हैं, यू नो गोल्ड ऑनलाइन खरीदते हैं जो फिजिकल गोल्ड नहीं होता, और उसके अंदर कई बार वो छोटे छोटे हिस्सों में खरीदते हैं जैसे जैसे उनके पास सिद्धि जी पैसे अवेलेबल होते हैं या जब उनको फंड्स की अवेलेबिलिटी मिलती है वो गोल्ड में उस दिन के भाव से गोल्ड खरीदते हैं, डस नॉट मैटर वो क्या प्राइस है। मुझे लगता है राज ज्वेल्स के पास एक बेटर फाइनेंसिंग ऑप्शन है
0: जी,
6: जिसमें जैसे आज गोल्ड का प्राइस गिरा हुआ है $4,430 पर ट्राई अउंस, आपको इंतजार नहीं करनी है कि आपको जब पैसे अवेलेबल होंगे तब गोल्ड खरीदना है। राज ज्वेल्स के फाइनेंसिंग ऑप्शन में आप गोल्ड आज इन्वेस्ट करें, आज ज्वेलरी गोल्ड की घर लेके जाएं और अपने प्लान के हिसाब से, जैसे आपको लगता है कि हर महीने मेरे पास $500 एक्स्ट्रा होने वाले हैं या $1,000 पर मंथ एक्स्ट्रा होने वाले हैं जो मैं एलोकेट कर सकता हूं इस पेमेंट के लिए, तो $9,000 का गोल्ड आप उस दिन तक इंतजार ना करें जब आपके पास पैसे अवेलेबल हो, क्योंकि उस दिन गोल्ड का प्राइस शायद ज्यादा हो सकता है, सिचुएशन फेवर में नहीं हो सकती है। लेकिन आज घटे हुए गोल्ड प्राइस में वो खूबसूरत सी ज्वेलरी लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के गोल्ड में इन्वेस्ट करें। सो सिद्धि जी, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे आप अपने पैसे से करें, लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े हर महीने दे के और उसकी इंतजार करते हैं कि फाइनली जब मेरे पैसे लमसम इकट्ठे हों तब मैं उस डील को लॉक डाउन करूं और गोल्ड का प्राइस फिक्स करूं, उसके अंदर मुझे लगता है कि हो सकता है गोल्ड आपके फेवर में ना हो और गोल्ड का प्राइस ट्रेंड पर हो। राज ज्वेल्स की डील में ये बेनिफिट है कि हम 0% पे आज आपको ज्वेलरी घर ले जाने देते हैं और आप अपनी कन्वीनियंस से 9 इंस्टॉलमेंट में वो धीरे धीरे पैसे देते हैं। सो बड़ी से बड़ी चीज बहुत छोटी सी सरलता से आपकी बन जाती है। गोल्ड प्राइस जिस दिन आपको पसंद आए उस दिन का प्राइस आके आप लॉक करें, परचेज करें और उस दिन से आपकी 9 मंथ की इंस्टॉलमेंट शुरू होती है। तो देखिए गोल्ड में तो इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, चाहे वो 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो, 18 कैरेट कलर्स डायमंड ज्वेलरी हो, जीआई सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड हो, राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन समझने के लिए जिसमें सोने के भाव हिंदुस्तान से किस तरह से अमेरिका में सस्ते हैं वो समझने के लिए राज ज्वेल्स की टीम से जरूर कनेक्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। देखिए दोस्तों, जिस तरह से बॉबी जी हमें गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाते हैं, स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करते हैं, शायद ही ये इन्वेस्टमेंट एनालॉजी आपको कहीं और मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो हाफ ईयर जो बचा है उसके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आज विजिट कीजिए rajjewels.com। और हमारी जो ये खास गोल्ड डिकोडर सीरीज है ऐसी ही जारी रहेगी। और आपका भी कोई सवाल है तो हमें जरूर भेजिए @rjmirchisiddhi@sidhihidm जरूर कीजिए। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: झुमका।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
6: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइक सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और एक ऐसे ही एल्बम के बारे में बात हो रही है जब वी मेट। जी हाँ, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और आज इसी एल्बम के एक गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम इजलिन। प्रिया जी कहती है इजलिन से, इस एल्बम का जो एक गाना है तुमसे, ही मोहित चौहान की आवाज में, वो बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। क्योंकि जब भी वो लिंकन पार्क की शांति में होती है, उनके हाथ में गरम कोका होता है, तब बैकग्राउंड में वो यही गाना सुनती है तुमसे ही। क्योंकि यार उसमें एक लाइन है कि मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। और वो अपने हस्बैंड को ये जो लाइन है वो डेडिकेट करना चाहती है। बड़ा ही फिल्मी मोमेंट है। जी हाँ प्रिया जी। और दोस्तों वैसे एक बहुत ही खास बात इस गाने की, मतलब यार जब मोहित चौहान की आवाज में ये गाना गाया गया था, एक हल्की सी हंसी जो उन्होंने लाई थी इस गाने में, जैसे कि कोई बहुत ही शांति से किसी का नाम ले रहा हो। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे मोहित चौहान जी माइक से थोड़ा दूर हो गए थे ताकि वॉइस में वॉकिंग इन द रेन वाली फीलिंग आ जाए। और शायद इसीलिए ये गाना लगता है कि यार इवन दो तुम तन्हा कहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा वो अपना साथ ही चल रहा है। तो आप भी बताइए क्या आपको ये गाना पसंद है, और ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार उस एल्बम का हर एक गाना बजाएंगे आपके लिए। और कहां, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-

0: 4041900 or visit indianikaacademy.com.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
3: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

दोस्तों, हर शहर का ना अपना एक मौसम होता है और हर मौसम के साथ एक खास याद जुड़ी होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मौसम की बातें हो रही है तो यार, किसी को मौसम के नाम से ना मुंबई की बारिश याद आती है, भीगी सड़कें, कटिंग चाय और वो हल्की सी रश वाली फीलिंग। तो किसी को दिल्ली की सर्दी याद आती है, फॉग, स्वेटर्स और धूप सेकने वाली मॉर्निंग्स। और किसी को अपने होम टाउन की शाम, जहाँ हवा धीमी चलती थी और वक्त भी। तो तब याद आता है ये गाना जमाना लागे, जब वो लाइन आती है ना कि तुम्हारे शहर का मौसम, तो लगता है कि किसी एक जगह का नहीं, एक एहसास का जिक्र हो रहा है। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों कि शहर बदल जाते हैं पर उनके मौसम दिल में रह जाते हैं। तो आप भी बताओ कि आज के मौसम के हिसाब से आपको किस शहर की याद आ रही है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि जिस भी शहर की याद आ रही हो, ये गाना आपको शहर तक जरूर लेके जाएगा। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, जैसे वक्त बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वैसे बॉलीवुड का म्यूजिक फ्लेवर भी बदल रहा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जो 90s एंड 2000s में मेलेडी और लिरिक्स डोमिनेट करते थे, आज के वक्त में प्रोडक्शन, बीट्स और ग्लोबल साउंड इन्फ्लुएंस ज्यादा आ चुका है। जी हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी कोई सोलफुल गाना आता है ना, इंस्टेंटली हिट हो जाता है। मतलब ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, इमोशंस अभी भी किंग है। तो आप भी बताना, आप भी कौन सी ऐसी ओल्ड स्कूल मेलेडी पसंद करते हो जो आज के न्यू एज बीट्स को भी बीट करते। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि मेरी पसंद की ओल्ड स्कूल मेलेडी ये रही आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हे कभी आना तुम मेरी गली,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
4: हेलो
5: हेलो, आप होल्ड कर रहे हैं एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
4: हाँ जी बोलो।
5: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन?
4: हाँ जी देते।
5: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
4: कहाँ भिजवाना है
5: मैं आपको
4: बता दो।
5: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
4: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
5: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
4: किसको जी?
5: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
4: क्या गिर गया?
5: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
4: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
5: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
4: सामान
5: उठवा।
4: क्या मजाक कर रहा है?
5: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
4: उठवाना है
5: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
6: हेलो
4: हेलो,
6: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
4: कहाँ से बोल रहे हैं?
6: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरु।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: feelings back.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना के थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो यह है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट, यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra Saab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Ise apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफी नहीं है मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसंत बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरेशी को डांस करना है। और कहीं ना कहीं हुमा कुरेशी ने अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स ऑन।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
5: चमकते सितारे,

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव की।